0: फ्रीक्वेंसी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।

0: to enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones. Subscribe to Filmi Gaane channel.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971-6602।
4: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
5: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
4: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
5: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स
4: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
4: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।

श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगर वासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं,
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99 393 65 930।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिंजन 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434 03 62042434 03।

0: कूला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 8वीं क्लास तक के सभी विद्यालय को जिला पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से किया बंद। महंगाई पर कांग्रेस पार्टी ने बैलगाड़ी से किया विरोध प्रदर्शन। बाल विकास परियोजना को लेकर की गई बैठक। मेडिकल स्टोर के एक लाइसेंस को प्रशासन ने किया रद्द। और पानी में डूबने से हो गई एक युवक की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने तत्काल प्रभाव से जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के 8वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई को फिलहाल बंद करने का आदेश जारी कर दिया। सभी स्कूलों में 8वीं क्लास तक के कक्षा का संचालन 26 तारीख तक नहीं हो सकेगा। हालांकि 8वीं से ऊपर तक के सभी क्लास सुबह 11 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। जिला पदाधिकारी ने इस गर्मी के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह निर्देश जारी किया है। इसके बाद से 26 मई तक जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालय में कक्षा 8वीं तक के नीचे के सभी क्लास को स्थगित किया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग की अध्यक्षता में महंगाई को लेकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। हाथों में तख्ती लेकर सरकार का विरोध किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि बेतहाशा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों तथा नीट पेपर लीक के विरोध में यह हल्ला बोल प्रदर्शन आयोजित किया गया है। पूरे शहर में घूमते हुए पार्टी के नेताओं ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इधर बाल विकास परियोजना कार्यालय विजयीपुर में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका और तमाम संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इसमें पोषण ट्रैकर अंतर्गत ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार सुयोग्य लाभुकों का एंट्री, महिला पर्यवेक्षिका स्तर से लंबित आवेदनों का निष्पादन, वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित करना जिसके द्वारा शून्य आवेदन का एंट्री किया गया है उन सभी केंद्रों पर एंट्री कराना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में लाभुकों का पंजीकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करना संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। शहर के बंजारी चौक स्थित मुमताज मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की बिक्री के मामले में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 34 दिनों तक चली गहन जांच के बाद विभाग ने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर तक नशीली दवाओं की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित भालोटिया मार्केट से की जा रही थी। छापेमारी में बड़े नेटवर्क का खुलासा भी हो सकता है। ड्रग विभाग की जांच में सामने आया है कि दुकान से बरामद करीब 20 लाख रुपए मूल्य की दवाओं की खरीद से संबंधित जो रसीदें विभाग को उपलब्ध कराई गई थी वह जाली मिली हैं। इसके आधार पर विभाग ने नशीली दवाओं की सप्लाई और इसके गड़बड़ झाला को लेकर कार्रवाई करते हुए फिलहाल दुकान को सील कर उनके लाइसेंस को रद्द किया गया है और अब इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जादवपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, इसी दौरान गहरे पानी में जाने से हादसा हो गया। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी है। वहीं इस मामले में मृतक के साथ गए उसके दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और फिलहाल इस मामले को लेकर आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इस घटना के संदर्भ में खबर लिखने तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। इस हादसे में मृत युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पसरमा गांव के दिलीप उपाध्याय के 16 वर्षीय पुत्र अमन उपाध्याय के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आवश्यक पूछताछ की जा रही है। HIV से संक्रमित व्यक्तियों की मिशन मूड में अब सक्रिय TB की पहचान, जांच और उपचार इत्यादि की जाएगी। इसके लिए ART सेंटर आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की TB की स्क्रीनिंग होगी। कार्यपालक निदेशक ने इसके लिए पत्र जारी कर सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक निर्देश दिया है। इसमें सभी TB रोगियों की भी HIV की जांच की जाएगी और HIV पीड़ितों की भी TB की जाँच की जाएगी। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुल 55 मामलों में अलग अलग जगहों से पकड़े 3,379 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब को आज नष्ट करते हुए जमींदोज कर दिया। इसके लिए मजिस्ट्रेट भी तैनात थे और JCB मशीन से कुचलकर बलथरी चेक पोस्ट पर शराब को दफन किया गया। इधर श्रम विभाग के धावा दल ने 3 जगहों पर छापेमारी की और 3 बाल श्रमिकों को भी मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि पहली कार्रवाई जमुना बाजार के हैप्पी स्वीट एवं चाट कॉर्नर में हुई। यहां एक बाल श्रमिक को भी मुक्त कराया गया। दूसरी कार्रवाई कोनवा मोड़ पर पूजा स्वीट में हुई और तीसरी कार्रवाई अपना मिष्ठान भंडार माझा नहर के पास हुई। कुल 3 बाल श्रमिकों को धावा दल ने भी मुक्त कराया है। सभी श्रमिकों को 3,000 आर्थिक सहायता तत्काल दी गई है और आगे इन संस्थानों पर FIR दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज उद्योग विभाग बिहार पटना के सचिव ने जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में PM EGP और PM FME तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षा की, जिसमें जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और DGM बियाडा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गोपालगंज तथा अग्रणी बैंक के प्रबंधक उपस्थित रहे। इसमें उद्योग विभाग बिहार पटना द्वारा अपना परिचय देते हुए बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, उद्यमियों एवं लाभुकों का स्वागत किया गया और उद्योग विभाग से संचालित सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। विजयपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे 4 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी उत्तम राजभर, पिता सीता राजभर, दूसरा संदीप राजभर और तीसरा मंटू राजभर तथा चौथा भुवनेश राजभर हैं। ये तीनों शिवकटई बहरवा थाना विजयपुर के निवासी हैं। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कांग्रेस पार्टी ने आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। थावे थाना क्षेत्र में 26 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाते हुए भगवानपुर में शराब तस्कर राहुल कुमार को गिरफ्तार किया, जो थावे के केशोपुर गांव के अमरजीत मौतो का पुत्र बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी ने शराब तस्करी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसकी निशानदेही पर अमरनाथ प्रसाद के बांसवाड़ी से पुलिस ने 20 लीटर से अधिक देशी शराब को भी जब्त किया और अब इन दोनों ही मामलों में विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीपुर थाना की पुलिस ने भी शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त लालू शर्मा को गिरफ्तार किया। यह फुलवरिया थाना क्षेत्र के दुबवलिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पहले से इस पर न्यायालय में मामला लंबित था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुंचका गांव थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। यह बलेसरा गांव के हैदर अली हुसैन का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके घर से ही इसको गिरफ्तार किया है और आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में सांसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने की। इस दौरान सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की अपील लोगों से की गई। इस बैठक में जिला परिषद के अध्यक्ष, जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, ADM, SDO, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं NHI के भी तमाम पदाधिकारी गण शामिल हुए। बैठक में रोड एम्बुलेंस की व्यवस्था, ब्लैक स्पॉट की पहचान और सड़क की मरम्मत करने को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। तो वहीं NHI के बगल के बस्ती के किनारे बैरिकेटिंग लगाने, अनाधिकृत कट को बंद करने के लिए और वाहन की गति सीमा पर ध्यान रखने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, जान बचाएं का नारा दिया गया तथा सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों से जनता को जागरूक करने के लिए और बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट बांधे चरपहिया वाहन नहीं चलाने, ओवर स्पीडिंग नहीं करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने से संबंधित अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। इधर माझा थाना क्षेत्र के गुलाम हुसैन टोला में 20 मई को मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि इस युवती पर 2 मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह की आए दिन हो रही घटनाओं से पुलिस भी परेशान है और समाज में एक गलत संदेश भी जा रहा है, इसी को लेकर युवती पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। इस संदर्भ में सदर 2 SDPO राजेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
4: मांझागढ़ थाना अंतर्गत गुलाब हुसैन टोला स्थित मोबाइल के टावर पर एक लड़की चढ़कर बार बार अपने प्रेमी से शादी कराने का जिद कर रही, अन्यथा वो आत्महत्या करने पर अड़ी हुई, जिसको देखकर आसपास के काफी लोग एवं ग्रामीण वहां जुट गए तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। इसकी सूचना मांझागढ़ पुलिस को मिलते ही थाना अध्यक्ष मांझागढ़ के द्वारा पुलिस बल के साथ टावर के पास पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया तथा करीब 7-8 घंटा काफी मशक्कत के बाद उक्त लड़की को टावर से सुरक्षित नीचे उतारा गया एवं थाना लाया गया। उक्त लड़की के द्वारा यह कृत्य कानून विरोधी है। इस संबंध में जांचों उपरांत उक्त लड़की के विरुद्ध नियमानुकूल प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही आम जनता से यह अपील है कि अपने अपने बच्चे बच्चियों को इस तरह का कृत्य करने से मना करें एवं समझाएं बुझाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो तथा समाज पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े एवं समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे।
3: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर, 8वीं क्लास तक के सभी विद्यालय को जिला पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से किया बंद। महंगाई पर कांग्रेस पार्टी ने बैलगाड़ी से किया विरोध प्रदर्शन। बाल विकास परियोजना को लेकर की गई बैठक। मेडिकल स्टोर के एक लाइसेंस को प्रशासन ने किया रद्द। और पानी में डूबने से हो गई एक युवक की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
6: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
5: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
6: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
5: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
5: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
15: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
16: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
17: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
18: आज मैं आपको एक ऐसे किरदार की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो राइटर ऑथर गीतांजलि कृष्णा की जानी मानी किताब की किरदार है, मीनल। उस शाम तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक मीठी सी आवाज, किसी 45 से 50 साल की फेमस महिला की। ये आवाज है वेल नोन राइटर ऑथर मिस गीतांजलि कृष्णा की। उन्होंने कहा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जर्रा नवाजी बख्शी। दिल जब बहुत खुश होता है तो लोग आंखों में पानी की तलाश करते हैं, जैसे कि अभी आप में से कुछ मेरी खुशी में तलाश करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो श्रेष्ठ लेखिका का पुरस्कार मुझे मिल रहा है ना, दरअसल ये उस लिबास को मिल रहा है जो मेरे शरीर ने पहन रखा है, कलम की शक्ल में। आपने मेरी किताब एक रंग इश्का को काफी पसंद किया, उसके किरदार मीनल को लेकर काफी सवाल और खत भी भेजे। अच्छा लगता है जब ख्यालों की दुनिया से पन्नों पर उभरी कोई बात जहन को यूं छू जाती है। जैसे कि शर्मा जी ने अभी रिक्वेस्ट के रूप में आदेश दिया है कि एक रंग इश्का को जरूर पढ़ा जाए, तो उनकी इस बात को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। पर इससे पहले कि मैं आपको उन पन्नों में मीनल के दर्द को, उसके प्यार को, उसकी अल्हड़पन को कुरेदूं और आप तक पहुंचाऊं, एक बात साफ कहना चाहूंगी कि ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है जहां मुझे आपकी किसी वाहवाह की जरूरत होगी। और फिर मिस गीतांजलि ने मीनल की कहानी को पढ़ा, मैं भी वहीं उसी हॉल में बैठी थी। उनकी कहानी में, उनके अंदाज में खोई हुई आपको भी सुनाती मीनल की कहानी एक रंग इश्क का। राजनगर के एक छोटे से कस्बे में एक अल्हड़ मज जवानी में सरा भोर घुमा करती एक बिजली का नाम था मीनल। उसकी अपनी एक निराली अदा थी, एक अलग अंदाज था, किसी से बात करने का, किसी के साथ रहने का। कोई इतना भी खुश और शरारती हर वक्त कैसे रह सकता है? शायद इसकी खास वजह थी कि मीनल ने कभी भी अपने अंदर की बच्ची को मरने ही नहीं दिया। वो अभी भी तितलियों की तलाश में बगीचों में घूमा करती थी, अभी भी चाट कचौरी के चटकारे लेने रामदीन के ठेले पर पहुंच जाती थी, अभी भी छोटे बच्चों के साथ कंचे खेला करती थी। पर इन सब खास अंदाज के बीच उसकी एक अनोखी आदत भी थी, उसका प्यार। नहीं, किसी नौजवान से इश्क की बात नहीं थी, उसका खास प्यार एक रंग को लेकर था, सुर्ख लाल रंग। ना जाने क्या खास था इस लाल रंग में कि मीनल इसकी दीवानी थी। लाल रंग की चूड़ियां, लाल रंग की कई तरह की चप्पलें, लाल रंग का वो खास रुमाल, लाल रंग की कई सारे कपड़े, लाल रंग से रंगी उसकी सारी दुनिया। और हाँ, उसकी अजीज एक लाल रंग की डायरी भी थी, जिसमें वो जिंदगी के तजुर्बे को, जिंदगी की महक को नज्म की, कविता की शक्ल दिया करती थी। कहने का मतलब ये है कि दिन भर के तमाम किस्सों में से किसी खास को वो कविता की शक्ल देती थी और उसे अपने करीब अपनी लाल डायरी में लिख लेती थी। यूं तो उसे पसंद नहीं था कि उसकी वो लाल डायरी को कोई छुए या फिर पढ़े, लेकिन अमिया जो उसकी खास दोस्त थी, उसे कभी कभी कुछ कुछ वो पढ़ा दिया करती थी, पर उसे भी वो लाल डायरी छूने की इजाजत नहीं थी। हाँ, वो मीनल के मन करने पर उसे मीनल की आवाज में सुन सकती थी। मीनल की डायरी से पढ़ा गया एक पन्ना कुछ यूं कहता था, आरजू तमाम कैद है किसी तितली की तरह, आरजू तमाम कैद है किसी तितली की तरह, फूल तो बदलते हैं बागीचा नहीं बदलता, शिकायत नहीं बस ख्याले तन्हाई है, यूं शोर करने से निजाम नहीं बदलता। मीनल अब 18 साल की हो चुकी थी। पिताजी को काफी बार मनाने के बाद वो मुंबई आने वाली थी। खुद भी डरी हुई थी एक अनजान शहर में कैसे वो खुद को संभाले और संवारेगी, लेकिन भविष्य के चमकते सपनों में मीनल की आंखें खुश थी। वैसे इतने डरने की बात नहीं है, मीनल ने खुद से कहा, ये अमिया भी तो साथ चल रही है, बहुत से लोग मुंबई जाते हैं, सपने पूरे करते हैं, और फिर हमारे पास तो कॉलेज हॉस्टल भी है, डिपार्टमेंट से आना है हॉस्टल में रहना है, कोई फजीहत ही नहीं। बस इन्हीं ख्यालों के साथ मीनल पहुंच गई सपनों के बनते बिगड़ते शहर मुंबई।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
19: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
20: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
21: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
22: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
21: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
20: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
21: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
20: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
21: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
20: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
23: सुनिए सुनिए सुनिए,
24: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
23: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
24: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
23: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
17: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
18: मुंबई की भीड़ भाड़ और शोर शराबा किसी भी तरीके से मीनल को अपना नहीं रहे थे। कहाँ राजनगर की छोटी गलियों में बड़े बड़े से दिल रखने वाले मोहल्ले के लोग, और कहाँ यहाँ मुंबई में बड़े बड़े इमारतों में रहने वाली अनजान शक्लें। ये सब मीनल के लिए नया था। जिन कपड़ों को उसके मोहल्ले के लोग वाहियात मानते थे, वो यहाँ पर हाई क्लास लगने का जरिया है। लोग एक दूसरे से बात नहीं करना प्रिवेसी समझते थे। इन्हीं सब उधेड़ बुन में कुछ खिचखिची सी थी मीनल। खैर, रात भर इस शहर के बारे में सोचने के बाद कुछ ख्याल उसने अपने कॉलेज और डिपार्टमेंट का भी किया। कल उसके सपनों की उड़ान का पहला दिन है। सुबह उठ के मीनल तैयार हुई, अमिया साथ में ही थी, और फिर दोनों हॉस्टल के कमरे से निकल के चल दी डिपार्टमेंट की तरफ। मीनल ने अपनी पसंद की लाल कुर्ती और लाल सैंडल पहनी थी, और अमिया को भी उसने लाल कपड़े ही पहनवाए जबरदस्ती। उसका मानना था कि पहले दिन लाल का शुभ होता है, कुछ अच्छा ही होगा। जैसे जैसे वो आगे चल रही थी, कुछ लड़के लड़कियां आपस में ज्यादा ही गुले मिले लगे। अमिया के तो होश उड़े ही, मीनल ने भी भवे चढ़ाकर हंस के अपनी हैरानी जताई। ये सब मीनल के साथ नया था, जहाँ पे लोग इस तरह से पेश आ रहे थे, पर वहाँ लोग अपने ख्याल और अपने कपड़ों से आजाद थे, और मीनल अपनी खुशी में। मीनल ने सोच लिया था कि यहाँ सबसे अच्छे से दोस्ती करेगी, सबको इज्जत देगी और सबका ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। उसने अपनी पसंद का आर्ट्स ले रखा था, तो बाकी भी आर्ट्स के सेक्शन उसके लिए खास ही थे। मीनल को पेंटिंग्स का बहुत शौक था, पर उसे वो बनाना नहीं आता था। हाँ, वो शब्दों से अच्छे से खेल जाती थी और उन्हीं रचनाओं को वो अपनी तस्वीर समझती थी, पर अक्सर वो होता नहीं है जो आप सोच के चलते हो। ये मुंबई थी मेरी जान, जो बस ने सबको देती है पर अपनाती बहुत कम को है। कॉलेज में मीनल की सादगी भरे कपड़ों को कुछ लोग उसका देहातीपन समझते थे, कुछ को तो वो अपने बराबर ही नहीं लगती थी। उससे गरीबी और गवारपन की बदबू आती थी उन्हें। मीनल ने तो सबको अपना समझा था, पर पहले 2-3 तानों के बाद वो भी समझ गई थी कि जिंदगी वैसी नहीं जैसी आप चाहते हो। खैर, इसी उधेड़ बुन के बीच अमिया तेजी से मीनल के पास पहुंची और उसे बताया, ऊपर वाले फ्लोर पे आर्ट सेक्शन वालों की पेंटिंग्स लगी हुई है, चल देखते हैं। मीनल को भी आइडिया बेहतर लगा और वो भी ऊपर चल दी। वहाँ ढेर सारी अलग अलग ख्यालों की पेंटिंग्स, कुछ तो ऐसी थी जैसे चित्रकार ने हकीकत को पेपर पे उतार ही दिया हो। मीनल को सब बहुत खूबसूरत लग रहा था, तभी उसकी नजर कोने में रखी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें ढेर सारे लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था। उस तस्वीर में एक बागीचा था जिसमें तरह तरह के फूल बने थे, और साथ ही टाइटल लाल रंग से सनी हुई तितली। पर इस चित्रकार ने गजब का काम किया था, इसने बागीचे के कोने से एक जंजीर निकाल के उड़ती तितली के पैर में बांध रखी। मीनल को यकायक अपनी रचना की वो पंक्तियाँ याद आ गई जो उसने तितली पर लिखी थी। वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन है जिसके ख्याल इस तरह से उससे मिलते हैं। कुछ सोचती हुई वो हल्की सी पीछे होकर अपनी डायरी निकालने को ही हुई कि उसकी टक्कर एक इंसान से हो गई जो ठीक उसी के पीछे खड़ा था। उसकी इस खुशी को देख रहा था और उसने मीनल से तबाक से पूछा, क्या सच में आपको ये तस्वीर पसंद आई? मीनल ने कहा, जी हाँ, ये बड़ी बेहतरीन और दिलचस्प तस्वीर है। ये कहते हुए मीनल पीछे पलटी और उसकी नजर एक खूबसूरत मर्द पर पड़ी।
17: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
18: वो डेविड था जो इस कॉलेज का एक टीचर है और साथ में पेंटिंग्स का शौक भी रखता है। मीनल की नजर डेविड से हट ही नहीं रही थी। फिर उसने सॉरी कहकर हटकर पूरी तरह से डेविड को देखा। लाल कुर्ता और जीन्स के साथ खड़ा था डेविड। आंखों पर हल्का सा चश्मा नजर वाला था शायद, और चश्मा क्या खूब लग रहा था, उसका फ्रेम भी लाल ही था। मीनल ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी धड़कन को इतनी तेज होते महसूस किया था। मीनल ने खुद को संभाला, अपने बाल ठीक किए और नीचे आ गई। उस दिन हॉस्टल के रूम पर आकर मीनल उस टक्कर को याद करके खुश होती रही। पूरे दिन ने उसे परेशान रखा था, पर दोपहर की उस टक्कर ने एक अलग ही सुकून दिया था मीनल को। फिर उसने निकाली अपनी वो खास लाल डायरी और उस पर लिखा, ये जमीन जिस पे गिरी ना थी दो बूंद शबनम की, ये जमीन जिस पे गिरी ना थी दो बूंद शबनम की, ना जाने किस बर्क ने मिट्टी भिगा दिया। और भी तो तराने थे जिन्हें था गुनगुनाना, एक नज़्म ने हमारी हस्ती बना दी। क्या ये किसी नई कहानी की शुरुआत थी या कुछ और? मीनल के इस भंवर की बात तब जब आप सुनेंगे इश्क का अगला रंग।
17: एक रंग इश्क का, एक रंग इश्क का।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
6: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
2: कहाँ पर?
6: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
6: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम 8:00 से 2:00 तक।
6: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565695।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर

0: जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया, तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो, चापलूस कहेंगे।
0: सच दीपा, तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन

0: कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: एडमिशन फ्री
2: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
12: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
13: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
12: तो देर मत कीजिए,
13: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी

0: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 87 8 94 18 7 44।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को।

0: एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
11: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। और मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले के दौरान शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कांवड़िया पथ पर सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था समय पर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पैदल पथ को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, शौचालय, साफ सफाई और पेयजल की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने अधिकारियों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा ताकि उन्हें जलाभिषेक के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को मेला की व्यवस्था के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन भी जमा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए दक्ष युवाओं की भर्ती करेगी। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि यंग प्रोफेशनल चयन संबंधी नीति 2026 के तहत विभाग 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल का चयन करेगा। यंग प्रोफेशनल का प्रारंभिक चयन 2 वर्षों के लिए होगा। विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए ये भर्तियां की जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में केंद्रीयकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। इस सेंटर का टोल फ्री नंबर है 14417 और 1800-34-54-417। इस नंबर के माध्यम से विद्यार्थी या अभिभावक विद्यालय से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि 31 मई तक चलने वाले अभियान के तहत और नामांकित बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 8 अंकों की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1 लाख प्रसव में महिलाओं की मृत्यु दर 96 रह गई है। पहले यह 104 थी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इससे बड़ी उपलब्धि बताया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने का तुरंत आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस वर्ष की थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है। इस अवसर पर बिहार राज्य जैव विविधता परिषद सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्य की अनूठी प्राकृतिक संपदा को बचाने के संकल्प के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जैव विविधता संरक्षण के लिए आम लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण को व्यवहारिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक ओर दक्षिण बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो वहीं उत्तर बिहार में अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार में अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। कैमूर का अधिकतम तापमान 44.4, बक्सर का 43.4 और औरंगाबाद का 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में लू के साथ गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित दक्षिण मध्य भागों के 14 जिलों में लू जैसे हालात रहेंगे। वहीं विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई है।
1: दिनांक 22 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। वहीं 6 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10:30 तक ही चलेंगी। यह आदेश सभी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 26 मई तक लागू रहेगा। राज्य में बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे विमुक्ति अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में 34 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। श्रम संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस अवधि में 68 जगहों पर छापेमारी की गई। अभियान के तहत नियोजकों के खिलाफ 15 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना में पिछले दिनों 25 करोड़ रुपए मूल्य के स्मैक मिलने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषिकेश क्रांतिकारक को रांची से गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में बिहार पुलिस में सिपाही रह चुका है। वह नालंदा जिले के दीपनगर नगवा गांव का रहने वाला है। सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जिले के पोखरा थाना क्षेत्र के पुतनगड़ा गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। बांका सिविल कोर्ट परिसर से 2 कैदी चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए। इस मामले में बांका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के कांगर पंचायत के कुहास में स्नान के दौरान 4 किशोर महानंदा नदी में डूब गए। गोताखोरों के प्रयास से एक बालक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। वहीं समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के शादीपुर बतनाहा गांव में पानी भरे गड्ढे में नहाने के दौरान डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। मधुबनी जिले के बाबूबरी थाना क्षेत्र के दोनवारी गांव में पुलिस ने एक युवक को 2 पिस्तौल और 100 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर समेत अन्य आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के सासाराम में 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से न्यू स्टेडियम फैजलगंज में आयोजित इस महोत्सव में लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर और वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 400 लीटर डीजल और ट्रांसफार्मर का 20 लीटर तेल जब्त किया गया। कटिहार जिले के बराड़ी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के तहत पुलिस ने 16 हाइवा और एक पोकलेन मशीन को जब्त किया है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पिछले चार दिनों में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक की जुर्माना राशि वसूली गई। नक्सल मुक्त मुंगेर जिले के सवासीन पहाड़ के जंगलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 2 देशी बंदूक और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट संदीप कुमार ने बताया कि नक्सल गतिविधियों पर पूरी तरह विराम सुनिश्चित करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से पराजित किया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है पुलवामा हमले का सूत्रधार आतंकी हमजा बुरहान पीओके में मारा गया। प्रभात खबर की सुर्खी है पुलिस को चैलेंज करने वालों को उसी की भाषा में 48 घंटे के अंदर मिलेगा जवाब मुख्यमंत्री। दैनिक जागरण ने कोलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली मुंबई की दौड़ नहीं, बिहार के 3 अस्पतालों के लिए 6 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं 1 साल बाद सुधा दूध 2 रुपए हुआ महंगा। आज अखबार लिखता है मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की महाबैठक मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। और मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403। सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
11: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
12: कहाँ पर?
11: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
12: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
11: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
12: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
13: Now pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
13: Pick it up, hello.
14: Now
13: pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम की 90.4 FM में।
1: सोनी मैम नमस्कार।
2: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: सोनी कुमार मिश्रा, दिल्ली से।
2: जी, कैसे हैं?
1: ठीक है, आप अपना सुनाइए।
2: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा था?
1: टाइम निकाल के फोन तो कर रहे हैं, फोन तो लगा था लेकिन एक ही दिन में काट दिया।
2: नहीं, ऐसा तो बात नहीं है कि मैं एक भी कॉल नहीं काटी हूँ अभी तक।
1: एक एक तो कॉल हमारी कटी है।
2: नहीं नहीं, तो बताइए गाना कौन सा सुना आज आपको?
1: आज हमको सुना दीजिए एक काजल साहनी का आया है गाना।
2: कौन सा?
1: यह मिलवा एक करेगा तू हमारे को।
2: जी, और सुनवाना भी है?
1: यही साले है, भैया है, भागी है और जितने सारे दोस्त खेलने वाले हैं। और मेरा तो अब अगले हफ्ते बजेगा ना।
2: जी जी,
1: ये तो पहले का भी मेरा अभी रुका पड़ा है।
2: नहीं, कल तो चला हुआ है आपका गाना एक।
1: नहीं, हमारा नहीं चला है, वो तो रिपीट वाला चला है ना। रिपीट वाला तो चला है, रिपीट
2: नहीं। आपका भी चला है कल?
1: नहीं चला है।
2: अरे चला है, मैं खुद चला।
1: रवि का चला है, रवि का चला है ना।
2: अब पता नहीं, फिर तो बात चलेगा कहीं।
1: वो जो आशा भोसले के दिया था वो अभी तक बजा नहीं।
2: अच्छा, बजा नहीं है तो बच गया होगा एक लिंक कहीं आपका।
1: नहीं बजा है, आज देखना आज बजेगा।
2: अच्छा अच्छा, चलिए तो आज की गाने की फरमाइश
1: तो अगले हफ्ते चलेगी।
2: कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है ना।
1: चलिए चल रहा है वो, हम भी समझ रहे हैं ना, इसलिए बोला ना का अगले हफ्ते चलेगी।
2: तो गाना सब बढ़िया, तो प्ले करे गाना आपकी।
1: जी
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किए।
1: थैंक यू।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
7: तो देर मत कीजिए,
8: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
12: भरोसे वाले से लेंगे,
11: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
12: और कीमत भी।
11: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
13: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
14: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
15: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
16: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
15: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
17: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
15: कॉल करें 85070-32042 पे।
18: Now pick your phone up.
19: Hello?
18: Pick it up, pick it up.
19: Hello?
18: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: बहुत धूप चल रहा है मैडम।
2: धूप तो चल ही रहा है आजकल,
1: बहुत गर्मी।
2: अब गर्मी नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा।
1: पहला कॉल लगाए थे तो सर के हाथ में शायद मोबाइल था,
2: सर के हाथ
1: काम में फंस गए तो ध्यान ही नहीं था। अब देखे ट्राई किए तो देखे भाई अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है।
2: चलिए, तो कॉल लग गया पहला ना सही लेकिन लगा तो।
1: और सब
2: सब बढ़िया है?
1: मैसेज कर दिए हैं।
2: अच्छा अच्छा,
1: सर के पास व्हाट्सएप से।
2: चलिए बढ़िया है, मैसेज कर दिए हैं तो देख ही लिए होंगे सर।
1: हाँ हाँ, देखे तो देख लिए।
2: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: गाना कौन सुनाइएगा
2: बता दीजिए।
1: कृष्णा की मूवी के सुनवा दीजिएगा, छेड़ मिलन की गीत रे मितवा, छेड़ मिलन की गीत
2: जी। और सुनवाना भी है?
1: हाँ, इतने सारे रेडियो रंजीम है, सभी श्रोताओं को और आपको भी, और जितने रेडियो रंजीम के सर जी और तो दिव्या जी ये नहीं है, सर जी है और सोनू भाई है, तो सोनू भाई के प्रोग्राम हम आप नहीं सुनते हैं। सुनते हैं कभी कभी लेकिन मैसेज नहीं करते हैं। ज्यादा यार बस चार्ज हम लोग जान करके हलो फरमाइश
2: जी। जी दिन में है तो दिन में समय मिलता है।
1: हाँ, दिन में समय, अपना काम भी होता रहता है अपना। चलेगा?
2: हाँ चलेगा, रिकॉर्डिंग फाइनल होते ही शुरू होगा,
1: 1:30 बजे के बाद हम लोग जुड़ेंगे।
2: आज तो जुम्मा है। चलिए कोई बात नहीं, इंतजार रहेगा।
1: ठीक ठीक, इंशाल्लाह
2: जी
1: मिलेंगे
2: जरूर। चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: ठीक है मैडम
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में। कैसी हैं?
1: बढ़िया हूँ।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
1: कुछ नहीं, आपके पास कॉल लगा रहे थे, बैठे हैं।
0: तो फाइनली कॉल लग गया है। गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: सुना दीजिए अपने पसंद से।
0: मेरे पसंद से कौन सा गाना सुनना है?
1: सुना दीजिएगा, बढ़िया देख कर सुना दीजिएगा।
0: बढ़िया देख कर सुना देंगे।
1: मैं तो यही सुना देती हूँ, दुनिया में नहीं रखेगा
0: जी। कौन सी आवाज में जो है वही ना?
1: हाँ
0: जी। और सुनाना भी है?
1: सबसे तो पहले आपके सुनाएंगे, मैं सुनूंगा। मेरा बेटा है अंश कुमार और सेवक में भी है।
0: ओके चलिए, तो प्ले करेगा ना आपकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल के।
2: हमारे पास आवल गई मखी।

दामाद जी कुछ कहलन है का? मनोज बाबू के साथ ही रिश्ता से खुश तो बाड़ू ना।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: घोड़े से नेहा बोल रहे हैं
1: जी। कैसी हैं?
2: अच्छा है, आप बताएं मैडम जी कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
2: फोन लगा रहा है आपके पास।
1: फोन तो लग गया है
2: जी।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
2: गाना बंजारन पे सुनना है
1: जी। टाइटल सॉन्ग की कोई और?
2: बंजारन के, बंजारन फिल्म का।
1: बंजारन फिल्म से कौन सा गाना?
2: मेरे साथों या साथों बचन दे दिया
1: जी। और सुनाना भी है
2: जी आपको? और जितना रेडियो रिमझिम आगे है हर दोस्त सब सुनते हैं उसको सब।
1: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
2: जी। मैडम जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, इसमें कॉल की

0: दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।
0: जी मैं सोनी गोपालगंज से, आप कैसी हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: जी जी बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं जी। कितना सा है?
1: जी जी हो गया है।
0: और मुझे सॉन्ग सुनना है।
1: जी सुनवा देंगे, बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है।
0: सॉन्ग सुनना है और सुनवाना चाहती हूँ आपको, सोनू सर को और जितने सुनने वाले हैं सभी को।
1: ओके, प्ले करें गाना आपकी।
0: जी और आप और सब बताइए?
1: सब बढ़िया है। आप बताइए आप कहाँ थी इतने दिनों से?
0: मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, स्कूल चली जा रही थी, अभी तो स्कूल फिलहाल बंद है।
1: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जब टाइम मिले सो से जुड़ जाया करिए।
0: जी जी जी बहुत ज्यादा है।
1: चलिए फिर बात होगी।
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कॉल किया।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
3: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
6: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
3: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स।
6: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
6: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
7: Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी क्या हालचाल है योगेश जी?
1: बढ़िया।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी तो बस आराम कर रहे
2: हैं। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: कहाँ लाया मेरा यार, पहाड़ों में फिल्म है अभी।
2: और सुनवाना भी है गाना?
1: कुछ नहीं रहा, सिर्फ अल्बोयल जी, लोकेन वर्मा जी, दिलीप पाटी, रोशन देवाना।
2: जी तो प्ले करे गाना आपकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका माई चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: जी मैं रूबी कुमारी बात कर रही हूँ, विलेज बैदौली से।
1: जी कैसे हैं रूबी जी?
0: मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: आपका नाम जान सकते हो मैम?
1: जी बिल्कुल जान सकती हैं, मेरा नाम सोनी है।
0: ओह थैंक यू नाम बताने के लिए, बहुत प्यारा नाम है आप। वैसे तो हम आपसे पहली बार नहीं बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, बट 2-3 मंथ हो गया है ना, इसीलिए।
1: अच्छा अच्छा
0: जी मैम। जी गाना सुनना है?
1: जी बिल्कुल, बता दीजिए गाने का नाम।
0: भोजपुरी किसी भी भोजपुरी मूवी का अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिएगा।
1: कोई भी भोजपुरी मूवी का अच्छा सा गाना?
0: जी जी, अपने फैमिली का नाम ले सकते हैं?
1: जी बिल्कुल ले सकती हैं।
0: जी मेरे बड़े भैया हैं राजकिशोर, और मेरे मझले भैया हैं पिंटू राज, मेरा छोटा भाई है मंटू राज, और मेरी बड़ी सिस्टर है सुनीता देवी, मेरी भतीजा है अमृता। हेलो
1: जी।
0: जी और मेरा भतीजा है आकाश कुमार, और भतीजी अमृता, मानवी, रितिका, इन्हीं लोगों को और आपको भी।
1: चलिए तो प्ले करेगा ना आपके?
0: जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लो मेरी चॉइस में कॉल के।
0: ओके बाय मैम।
1: ओके बाय।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM
3: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
2: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 87-894-18744।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: नमस्ते मैम।
15: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टेंशन 90.4 FM में।
14: थैंक यू मैम। अनिल बात कर रहे हैं छोटे
15: जी। जी कैसे हैं अनिल जी?
14: बस बढ़िया, अपना बताइए।
15: हमारा बढ़िया है सब कुछ।
14: चलिए अच्छी बात है।
15: तो क्या हो रहा है अभी, ड्यूटी में ही है?
14: हाँ ड्यूटी में ही है, लेकिन आज थोड़ा सा छुट्टी जैसा फील हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब छुट्टी पे, लेकिन अच्छा। मेडिकल तो खुला ही खुला रहेगा ना?
15: हाँ वो तो खुला ही रहेगा।
14: बाकी लोग ड्रेसिंग के लिए या फिर कोई किसी का फ्रैक्चर है या फिर जो पेशेंट भर्ती है उसके लिए तो रहना पड़ेगा।
15: मतलब खुला तो रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। इसलिए चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आराम भी जरूरी है।
14: जी जी,
15: रोज रोज काम करके भी आदमी बोर हो जाता है।
14: हाँ वो तो बहुत मतलब रेयर कभी इस तरह का सिचुएशन बनता है, तो रेगुलर काम करना ही पड़ता है।
15: बता दीजिए गाने का नाम।
14: गाना सुना दीजिएगा
15: जी।
14: एक सिंगर है ना, नया नया सिंगर है, वो साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना, वही वाला सुना दीजिएगा
15: जी। और सुनवाना भी है, डेडिकेट भी करिएगा।
14: डेडिकेट सारे लिसनर्स को।
15: जी
14: जी
15: चलिए तो प्ले करें गाना।
14: जी मैम
15: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ हेलो सर, इसमें फोन लगा है ना?
1: जी जी बिल्कुल लगा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हाँ वही तो सुनते हैं, हमको गाना सुनना है।
1: जी सुनवा देंगे। आपके बगल में पहले रेडियो चल रही है, उसे उसकी आवाज़ कम कर दीजिए।
0: तो वो लोहा फिल्म का सुना दीजिए।
1: लोहा फिल्म से कौन सा गाना?
0: लोहा फिल्म 16 बरस वाली
1: मेरी उम्र को सलामो वाला।
0: हाँ
1: और आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: संजय ग्राम खुली डुमर और इलाहाबाद बिहार से बोल रहे हैं।
1: जी तो प्ले करे गाना आपके?
0: ठीक कर दीजिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल।
0: धन्यवाद।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: Now pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.
6: Hello.
5: Pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.
7: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: नमस्ते मैम।
9: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: कैसी हैं?
9: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
8: मैं भी बढ़िया हूँ। नाश्ता पानी हो गया?
9: हाँ जी, मेरा तो खाना हो गया है। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
8: ये इसके बराबर दर्दी है, रात दिन सताए
9: जी। और सुनवाना भी है
8: आपको? सभी को रेडियो रिमझिम सुनने वाले
9: जी। और नाम भी बता दीजिए।
8: नाम सेल्फी भिजवा से
9: जी। और सब बताइए अभी क्या हो रहा था?
8: अभी तो सारा काम करके आराम करने बैठी थी, सोची कॉल लगा।
9: बिल्कुल बढ़िया सोची, तो प्ले करे गाना
8: जी। जी थैंक यू,
9: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चॉइस में कॉल की।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमटिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: रंकेश, गोपाल सर।
1: जी, कैसे हैं रंकेश जी?
0: बढ़िया है।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
0: जी, गाना सुनना है।
1: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
0: तो नदिया का पार का गाना नहीं है जो पूरे नाव से
1: वही, और सुनवाना भी है।
0: हेलो।
1: हाँ, गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं।
0: हाँ, जितना
1: सब लोग। ओके, चलिए तो प्ले करें गाना आपके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैं नीता शुक्लवा से।
1: कैसी है नीता जी?
2: हम ठीक है, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
2: नाश्ता हो गया?

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम 94.4 FM में।
1: मैडम
0: नमस्कार,
1: मैं मनीष प्रसाद बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोलता
0: जी। कैसे हैं मनीष जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: अभी बढ़िया है। अभी क्या हो रहा था?
1: अभी तो काम कर रहे हैं।
0: अभी आप लोगों से बातें कर रहे हैं
1: जी। मौसम क्या हाल है?
0: मौसम तो कड़ाके वाली धूप हुई है।
1: गेहूँ कट गया कि नहीं?
0: काफी हद तक कट गया है, एक आधू का बाकी है किसी किसी का, बाकी सब तो निकल ही गया।
1: चलिए ठीक है।
0: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: गाना दिलवाले की तरह का कोई भी सुना दीजिएगा।
0: दिलवाले से कोई भी?
1: हाँ जी।
0: और सुनवाना भी है?
1: हाँ, सबसे पहले आपको और रेडियो रेंजर सुनने वाले सभी श्रोताओं।
0: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माई चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: मेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22-567 या 97-714-86-164।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99-393-65-930।
7: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
8: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
7: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है, तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
8: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
7: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
7: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
10: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ। समय 9:23 हो रहे हमारे स्टडी घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1696 पे। तो जो भी श्रोतागण जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है, आज मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है। तो खैरियत बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सॉन्ग सुनना है, गाने का बोल है दिल परदेसी हो गया, सुनाना चाहती हूँ आपको। और शब्बा अपी रोशनी अपी साजदा जी, गुड़िया जी, आशा जी, निशा जी, सोनी जी, सिल्फी जी, हाजरा जी और हाजरा सिस्टर, खुशी जी, समीर भाई, कमरान भैया, शाहिल भाई, दीपक भाई, दिलीप भैया और इरफान भैया, गुलाम हुसैन भैया और वृंदर भैया, लवली भाभी, श्रावण शर्मा जी और सभी दोस्तों को। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। शबीना खातून फ्रॉम दिलुलिया से इस मैसेज को की है और कई सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं जो कार्यक्रम शुरू होने से काफ़ी देर पहले मैसेज कर दिए हैं श्रोतागण। तो आप अपने मैसेज को रिपीट करें फिर हम आपकी फरमाइश हम सुनाएंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा एक और मैसेज में लिखा गया है मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती, सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता मगर मैं पी भी लेता अगर तू शराब होती। सुनो भाई नमस्कार, और मैं भी आ गया हूँ आपके कार्यक्रम में, रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और कमाल की लाइन है और बन रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। दिल परदेसी हो गया।

रेडियो एमजी 94 एफएम सुन रहे हम सभी और काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे। और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो सुनम भाई कैसे हैं और मेरा मैसेज देखते हैं। ऐसे 3-4 दिन पहले मैसेज किए थे, मैसेज शामिल नहीं किए। आज मुझे भी एक गाने सुनना है और गाने का बोल है पर्दा के पीछे पर्दा, नासिक को पर्दा न कर लूँ। तो मैं MD महमूद केरला से, तो बिल्कुल आपके गाने हम प्ले करेंगे। आगे कुछ और भी मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सर राम राम प्रणाम, हम सोनू मिश्रा बिरवा से और ढेर दिन बाद मैसेज कैले बानी, गाना सुना दे तेरे नाम का दीवाना तेरे घर ढूंढता हूँ। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सो हो रही है क्या। बिल्कुल सो तो स्टार्ट है और एक गाने हम सभी इंजॉय कर चुके हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय नमस्ते MB2 शर्मा पिपराही से और सॉन्ग अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा। तो आप कवाले गाने के फरमाइश किए हुए हैं, तो ये बहुत लंबे हैं जो हम 2-4 मिनट में कुछ कर नहीं पाएंगे, तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो आप गाने को चेंज करते हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे गाने की फरमाइश करें आप लोग, ओल्ड इसलिए डिमांड किया जाता है, स्पेशली ओल्ड गाने के लिए ही बनाया गया है और साधारणतः गाने के लिए। लंबे लंबे गाने सुनने के बाद से एक दो ही गाने में समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम समय का ये कार्यक्रम बना हुआ है, जिसके कारण ओल्ड ही गाने अधिकतर सुनाने की प्रयास रहती है। और क्या ही किया जाए, आप लोग तो 90s या उससे भी नए गाने की फरमाइश कभी कभी कई श्रोतागढ़ कर देते हैं। तो आप लोग पुराने गाने का फरमाइश करें जो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर और किशोरदा के आवाज़ों में है, ऐसे गाने को फरमाइश करते हैं तो पूरा करने की प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगली फरमाइश को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश, इंजॉय करते हैं हम सभी।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

रेडियो रेमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई श्रोतागण की फरमाइश भी पहुँची है और काफ़ी लंबे गाने हैं और आगे मैसेज है। और अगले गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है सोनू मिश्रा जी की तरफ से, और गाने का बोल देते हैं, दीवाना तेरे नाम का घर ढूँढता हूँ। और आगे भी मैसेज कई पहुँचे हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, थैंक यू गाना प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज, हाय मैं श्यामदेव माझी भिदबिरवा गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर जी हमार गाना सुना दे, रेडियो सुनाता नहीं। बिल्कुल रावर भी फरमाइश हम पूरा करें। और एमएसएस के करे वाला बानी, ओह तो रावर ही फरमाइश हम प्ले करे जा रहा बानी सोनू मिश्रा जी, आप परेशान मत हो कि। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते कैसे हैं आप, मैं सोनी गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका भी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल बन रहे आप कार्यक्रम के साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और हाय नमस्ते बिटू शर्मा, तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है और एक एक करके सबकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, हम सभी इंजॉय करते हैं।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्य।

0: भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
2: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
2: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे सोशल लेस में फरमाइश का। और आगे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हैं और गाने की फरमाइश भी है, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश अगली पूरी होगी। और इस मैसेज को पहुँचाया गया है बेरवा से श्यामदेव माझी जी के तरफ से, और गाने का बोल दिया गया है तूने काहे को दुनिया बनाई। तो आपके फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सर जी गाना बजाने के लिए, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए, और कहते हैं गुड नाइट। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या चाहूं रब से तुझे पाने के बाद, क्या चाहूं रब से तुझे पाने के बाद, किसका करूं इंतजार तेरे आने के बाद, क्यों मोहब्बत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी यह जाना इश्क करने के बाद। सुनो भाई शामिल कर लीजिए दिलीप राम, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हाय सोनू बाबू कैसे हैं, हम भी जुड़ गए हैं और मैडम भी, तो बिल्कुल आप दोनों का स्वागत है। और कहते हैं कि तो आज मैडम जी को एक सॉन्ग सुना दें, बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल बने रहे हमारे साथ आप दोनों। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हाय MB2 शर्मा, तो आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है और अगली फरमाइश आपकी ही होगी। फिलहाल बन रहे हमारे साथ, इंजॉय करते हैं फिलहाल।

0: वाले चाहते।
1: काफी प्यारे सॉन्ग रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम पे मुकेश जी की आवाज में सुन रहे थे हम सभी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश पूरी होगी बीटू शर्मा जी की और इनकी फरमाइश हम सभी एंजॉय करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सुनो भैया, मेरा नाम है राधा कुमारी और मुझे ये गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आगे गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी

रेडियो रेम छिम 94.4 FM सुन रहे हैं हम सभी, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। चलिए आपकी सॉन्ग सुनाते हैं, और इस मैसेज को करती हैं सोनी सरेवर नंबर 1 गोपालगंज से, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है, और इन्होंने बीच से गाने के नाम बताए हैं। गाने का मुख्य नाम है रब्बा, मेरे रब्बा की मैं दिल लगाया रे। उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज़ में है। इंसान मूवी से, और या मूवी 2005 में आया हुआ था। और आप लोग जब भी गाने के फरमाइश करें तो क्लियर नाम पता कर ले, फिर गाने के फरमाइश करें। हम लोग को थोड़ा इसकी चाहत रहती है कि पता नहीं ये गाने हो या ना हो, तो आप लोग ऐसे गाने के फरमाइश करें जिसको आप जानते पहचानते हो, और पूरा नाम के साथ। आगे मिसेस पहुँचे हुए हैं, और लिखा गया है कि हाय नमस्ते। नमस्ते, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आप कौन है अपना परिचय दें। और आगे बढ़े तो आगे तो बिल्कुल आपकी मैसेज तो हमने देखा, लेकिन आप के जवाब हमने बता दिए हैं कि हाँ कार्यक्रम चल रहा है, और फिर आप मैसेज कर रहे हैं कि पता ना आप लोग नहीं बता रहे हैं, तो हम तो बता चुके हैं। फिलहाल आगे हम बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश प्ले करेंगे और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे हम सभी एक दूसरे के साथ। रेडियो 94.4 FM पे सोनी जी की फरमाइश।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
5: काफी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी रेडियो MCM 94.4 FM पे, सो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और आगे देखे तो समय जो है समाप्ति के करीब है, तो अंतिम गाने हम प्ले करेंगे और आगे गाने और गाने के फरमाइश करने वाले वीरेंद्र गुप्ता भैया, और इनके माध्यम से मैडम जी फरमाइश कर रही हैं लवली गुप्ता, और गाने के फरमाइश किया गया है महबूब मेरे मैंने, डेडिकेट पहले हमको फिर शफाक सुलोनी, हिना आशा, निशा गुड़िया, खुशी सबा, रोशनी साजहा, सबीता सबीना, सोनू बाबू को और सभी

बाकी श्रोताओं को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो ही गया है, लगभग कुछ सेकंड बाकी हैं। तो आगे गाने प्ले करने के बाद से फिर से मैं इसे शामिल करने का मौका नहीं मिलेगा, तो अंतिम गाने यही रहेगा और जो भी श्रोतागढ़ छोड़ जा रहे हैं नाराज़ नहीं होना है और समय होते तो बिल्कुल आप सबकी भी फरमाइश हम प्ले करते। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग रब्बा मेरे रब्बा रब्बा क्यों यह दिल लगाया जा रहा है। चलिए इस मैसेज को करते हैं रोहित जी देहरादून से। आगे मैसेज तो कई हैं लेकिन हम मैसेज शामिल नहीं करेंगे और गाने की फरमाइश भी पूरी नहीं करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम को समाप्त करेंगे अंतिम गाने एंजॉय करते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल से।

0: को थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: तू जो है।
12: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: से क्लास दसवीं तक कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मुसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
12: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
7: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
3: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
4: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
5: I said name's Aditya. You can call me Adi.
6: I'm Panna.
5: Hi. Feel like a spin? Uber chalogi?
6: Kahan?
5: Mars. Mars pe chalenge.
6: His plane mein?
5: Of course. Don't underestimate this fly. It can fly really high. Chalo,

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: इसे गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नू सारा मार्केट देख लेनी नू सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा नर्सरी से क्लास 10वीं तक कंप्यूटर एजुकेशन बस फैसिलिटी रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज कॉल अस 9939721308।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 7070-7563 या 7070-7542 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
3: All right.

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार।
12: Issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow, and in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that we end the midday news.
13: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
7: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
13: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
7: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
13: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
7: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
13: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टो डोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टो डोलाइट्स का यह पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
14: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
13: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
15: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
13: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
16: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
13: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
17: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
13: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
18: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
13: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: अरे सुनते हो, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18744।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774-86164।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुत

0: देखनी है पर कौनो चाचा लाना
1: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99-393-65-930।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।

0: माफ कर दो, कोशिश बा कि ना हो बट आगे के पता नहीं।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
3: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
4: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 8784-18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87-894-18744।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 88252-14946।
4: उत्तर बिहार का गौरव,
5: सारण प्रमंडल की शान,
4: गोपालगंज की धड़कन
5: और अपने भाषा की पहचान,
4: रेडियो रिंजन 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: इन सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपन बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। नेहा बात कर रही है
1: जी। पहचान गए।
0: और सब बताइए, खाना पीना हुआ कि नहीं? अभी
1: खाना नहीं हुआ, नाश्ता हुआ।
0: अभी नाश्ता हुआ है। काम धंधा निपटा लिए हैं? जी जी, मेरा हो गया है।
1: हाँ, काम निपटा लिया है।
0: चलिए बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना है अभी आपको?
1: गाना सुनना है हमसे तुमसे प्यार हो गया, यही फिल्म का गाना।
0: हमको तुमसे प्यार हो गया इस मूवी से, कोई भी गाना की गाना का नाम बताइएगा।
1: गाना माहिर है
0: जी,
1: यही गाना।
0: और गाना सुनवाना भी है?
1: गाना आपको जितना रेडियो रिमझिम आरजे है सब दोस्त सुनता है सबको।
0: ओके, चलिए तो प्ले करें
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल की।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: गुलाम हुसैन भाई से बोल रहे हैं, मुझे गाना सुनना है।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: हमारा भी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
1: अभी काम कर रहे हैं हम। मुझे सुनना है, क्या तुम्हें पता है गुलशन ये वाला गाना सुनना है।
0: जी, और गाना सुनवाना भी है
1: जी। सबसे पहले आपको मासूम कौशल जी, अरमान कमरान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, रूपना जी, दीप्ति जी, हिना जी, गुड़िया जी, अमनम जी, अमिनका जी, सभी को सुनवाना चाहता
0: हूँ जी। तो प्ले करे गाना आपके?
1: जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नंबर 24 में कॉल किया।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
7: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
6: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
7: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
6: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
7: जहां हर निवाला कहे वाह।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: जी मैं सुधीर बोल रहा हूँ, परिजीवा जिला देवघर झारखंड से मैम।
1: जी क्या हाल चाल है सुधीर जी?
2: क्या तबीयत कुछ गड़बड़ है मैम, इसलिए सोचे 11 बजे के बाद लगाएंगे तो बहुत बिजी 12 बजे के बाद लगी।
1: जी जी, इसलिए तभी तो कॉल लग गया ना।
2: जी कॉल तो लग गई। जी
1: जी जी, तो क्या हो गया आपको अभी?
2: जी आज सुना दीजिए मैम, प्यार के गाना आस्था भोसले और किशोर कुमार की आवाज में के बोल हैं, सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, तुम याद बहुत आते हैं।
1: जी, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
2: जी सबसे पहले मैं आपको, आपके रेडियो रिमजिंग पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिमजिंग के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके चलिए, तो प्ले कर दिए गाना आपके।
2: थैंक यू मैम,
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मैं चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम्स 94.4 FM में।
0: जी हम बना रहे
1: हैं। चल बात
0: जी बना और सुनाइए। बढ़िया है,
1: बढ़िया है।
0: बहुत तेज धूप निकल रहा है, गर्म बहुत बढ़ रहा है। दिलवा दीजिए।
1: जी बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: ये मूवी है कुली नंबर वन का, गोविंदा का।
1: कुली नंबर वन से कौन सा गाना?
0: जीएट की दुपहरी में पांव जले।
1: सुनवाना भी है
0: जी आपको, जितनी श्रोता
1: जी। कब लेकर गाना? ये आज या कल में कभी भी आ जाएगा।
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
12: Jab phone ring de bajte hai to kehte hai hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Bhage bhage phirte hai.
13: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: सलाम वालेकुम।
15: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
14: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
15: जी कैसे हैं मनान जी?
14: ठीक है।
15: तो क्या हो रहा था अभी?
14: अभी आज हो रहा है, घर का पेंटिंग हो रहा है।
15: अच्छा, कुछ फंक्शन है क्या घर में? कैसे?
14: नहीं फंक्शन नहीं है, पर कोई आने वाला है।
15: अच्छा,
14: अपना ही रिलेटिव मतलब हमारे चाचा का लड़के लोग आसाम से आ रहे हैं। तो वहाँ पर भी अपना घर आसाम में भी और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एक पुराना मेरा घर है, पूरा मतलब हवेली के जैसा बड़ा सा घर है और उसमें से हट के हम लोग अलग बनाए हैं। ये अलग घर जो हट के बनाए उसमें हम पेंटिंग करा रहे हैं।
15: अच्छा अच्छा।
14: तो आसाम से आने वाले हैं लोग तो कुछ तो लड़के बच्चे जो है पेंसिल से जो दीवारों पे जो है ना
15: पढ़ लिए हैं।
14: हाँ वो पढ़ लिए हैं। तो उसे मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रहा था तो कहा कि थोड़ा थोड़ा हो ही जाए ये कोट पेंट।
15: बिल्कुल।
14: तो वही पेंटिंग करा रहे हैं, उसी में लगे हैं। जब तक आपका याद आ गया, आपका याद आ गया तो कभी से उंगली करीब दो मिनट किए हैं, है ना, नींद जा रहा था तो जब तक से आपका लग ही गया।
15: चलिए बढ़िया है।
14: तो तीन बीट के बाद आज मतलब तीन बार हम कॉल नहीं कर चुके।
15: अच्छा।
14: आज आज ये चाहिए है क्योंकि तीन बार मैं इधर उधर कोई कोई काम काम से है ना लग गए थे। तो आज याद आया तो हमने कहा चलो आज फरमाइश करते हैं। तो कोई गाना सुनाइए मैडम आप नहीं मन से।
15: हिंदी में?
14: हाँ तो उर्दू में।
15: उर्दू में भी गाना होता है ना?
14: होता ही है। सुनाई तो सुनाइए ना।
15: अब मतलब सुने नहीं है, मैं तो ऐसे सुनी, अब मुझे नहीं पता है कि उर्दू में गाना है।
14: उर्दू में होता है वो पाकिस्तान वाले लोग बजाते हैं। यही है। मैडम आज सुना दीजिए अपने मतलब से। कोई
15: अपने मतलब से। चलिए ठीक है, तो प्ले कर रहे हैं।
14: ओके
15: ओके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
9: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
11: Now pick your phone up.
12: Hello?
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello?
11: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: आज तो हमें परेशान कर दिए महाराज, फोन धराते धराते पूरे परेशान हो गए।
2: सर क्या अब आपकी परेशानी खत्म हो गई होगी?
1: हाँ, आई सो कॉल धरा है। और सब बताइए,
2: सब बढ़िया है? तो उंगली दुख गया होगा आपका?
1: हाँ, उंगली नहीं दुखेगा, कैसे हम लोग उसी से काम है सबसे ज्यादा उंगली से।
2: हाँ, तो क्या हो रहा था अभी, ड्यूटी में है कि रूम पे है?
1: छुट्टी, आज भी छुट्टी मारे हैं।
2: आज भी छुट्टी मारे हैं?
1: हाँ, ऐसे गांव से मम्मी आई है ना।
2: हाँ,
1: तो अभी थोड़ा छुट्टी किए हैं।
2: चलिए बढ़िया है, आराम करिए। तो गाना कौन सा सुनना है?
1: बबीता सागर के कोई सा गाना सुनाइएगा।
2: बबीता सागर का?
1: हाँ।
2: अब जीजा साले आप लोग बबीता सागर के एकदम फैन है लगता है।
1: और शुरू में किए तो वो बता रहा था कि रिचार्ज ही नहीं है।
2: रिचार्ज नहीं था, थोड़ा लेट चेक किए तो तुरंत रिचार्ज हो गया। तो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: हाँ, उन्हीं को, जीजू का सुनाना है, वो अभी बबीता सागर का, हमारा भी बबीता सागर का है।
2: चलिए तो प्ले कर रहे हैं।
1: और बड़े जीजू का सुनाना है।
2: अच्छा अच्छा,
1: हाँ
2: चलिए ठीक है, तो गाना प्ले कर रहे हैं आपकी।
1: ठीक है
2: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम जिम में। वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: अशफाक अलम बरारी हरके।
1: जी, क्या हाल चाल है अशफाक जी?
0: ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया।
0: मैम अगला सोमवार को हम बताए थे इक्कीस तारीख लाल, तो हम नहीं सुन पाए।
1: तो वो तो सोमवार को ही चल गया है और मंगलवार को।
0: अच्छा मैम, जी जी
1: जी। तो आज कॉल किया, आज की आने की फरमाइश बता दीजिए।
0: मैम आपका मन से
1: नहीं, आप इतना मेहनत करके कॉल किए तो आप अपना मन बताइए। बाकी अभी जो गाना सुन रहे हैं आप मेरे ही मन से सुन रहे हैं।
0: अच्छा। मारा मारदा के गोली खेलम देवासाते होली,
1: तभी होली का गाना सुनना है।
0: जी जी,
1: चलिए तो प्ले कर दे गाना।
0: जी मैम, कब तक ऑनलाइन रहती हैं आप?
1: ऑनलाइन अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव में 12 बजे से आती हूँ 4 बजे तक।
0: अच्छा, लाइव में मैंने लाइव नहीं समझे,
1: जो अभी बोले ना ऑनलाइन।
0: जी जी
1: जी, तो ऑनलाइन में 12 बजे से आऊंगी।
0: अच्छा, 12 बजे से 4 बजे फोन लगाएंगे लग जाएगा?
1: हाँ हाँ, 12 से 4 के बीच में आप लगाइएगा तो आपका गाना तुरंत आप सुन लीजिएगा।
0: अच्छा, उसमें सुन लेंगे तुरंत।
1: जी जी, और अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये शाम को 5 से 7 के बीच में सुनिएगा।
0: अच्छा, ये गाना अभी बताए तो?
1: हाँ, अभी अभी ये जो भेजे हैं ये 5 से 7 के बीच में चलेगा।
0: 5 से 7 बजे ले?
1: हाँ
0: ठीक है मैम।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किए।

0: बेस्ट बा
1: बोली
0: भर होली देवर साथे रहला लेकिन 11 महीना मरद साथे रह मरद के मत छोड़ा
1: ओके
2: अरे ए चाची जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल
3: अरे ए बबू परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला सुनले बानी की आंख में सुई लागेला काफी दर्द होत होइनु
2: अरे बाग चाची तू कावना दुनिया में बारू अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी यहां के आंख में बिना सुई लगौले बिना चीरफाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर कॉल 9170856587।
6: सुनिए जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा
7: तो फिर देर क्यों चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन हर्निया अपेंडिक्स पित्त की थैली बवासीर भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
6: संपर्क 99393 65 930।
9: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
15: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
14: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
15: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज रोड इंडियन गैस एजेंसी के बगल में गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
16: Now pick it up,
17: hello.
16: Now pick your phone up,
17: hello.
16: Pick it up,
17: hello.
16: Now pick your phone up,
17: hello.
18: Jab phone gindi bajti hai to kehte hai hello.
19: Hello, hello, hello, hello, hello.
18: Bhage bhage phirte hai.
9: Break ke baad aap sabhi ka ek bar phir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: जी नमस्कार,
1: नमस्कार।
17: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम में।
1: अरे मैडम, ये मन में रहा फोन करके, लेकिन जनरेटर चलता है, फलाई होता है गर्मी के। अब सोचे की देखा लास्ट में लेट चालू भैया रिकॉर्डिंग, लेट भैया ना।
17: हाँ, 5 मिनट लेट शुरू भैया।
1: ना 5 मिनट के बाद 5-7 तक तो हम लगा रहे फोन।
17: रिचार्ज ना रहे ना फोनवा में।
1: हाँ हाँ, बताओ तो इनकमिंग नहीं है। सब मैडम क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है?
17: हाँ, अभी तो रिकॉर्डिंग है, चलता है।
1: कल हमारे फरमाइश भोजपुरिया में ना बजे नहीं ना, हम तो सुधगिरी मैसेज करते हैं, दोपहर में खाना खा के 3 बजे सुधगिरी।
17: प्ले ना कहीं का कले रहे ना
1: बजे रहे,
17: ध्यान नहीं के, बहुत सारा मैसेज रहा ध्यान नहीं के।
1: ना ना बजे रहे, देख पढ़ के बताई नहीं के बाद ही।
17: रउआ मैसेज कहनी की हमारा नींद आता तो मैसेज आने लगल की हमारा नींद
1: आता सुन के गई नहीं तो फिर। ये ना कल तो थोड़े रहे, इतवार रहे, संडे रहे,
17: कल भोजपुरिया रहे।
1: इसी में फर्क भेज ले रहे पत्रा वाली में, आप फिर आपकी फोन करके बात करके लिखवाए। चाहते रहे संडे के, जब ईयर बस चॉइस में हर गाना भोजपुरी बजे जाता था, संडे की चाहते रही थी रखल अंताक्षरी, हिंदी गाना खाली हुई सबसे बढ़िया 2 घंटा सब जनता लोगों में, जनता लोग सबको क्या आवाज सुनने की मिल रहा है।
17: जी जी
1: ना, भोजपुरी से बजे जाता हूँ, अब का बात बजे जाता हूँ। अच्छा रही,
17: चलिए ठीक बा, बोलिए के लिखवा दें, वो ज्यादा अच्छा रही।
1: हाँ, यही नंबर पे ना।
17: हाय,
1: कल सोनू सर बहुत रहा, सोनू सर मैसेज बहुत रहा, कहाँ से आई बा सर जवाब देते।
17: हाँ हाँ हाँ, तो वो व्हाट्सएप वाला नंबर वहाँ पे कॉल करें।
1: 98527-88291।
17: चलिए तो आज के गाने का फरमाइश बता दी।
1: आज के गाने का फरमाइश थे आग और 16 फिल्म का गाना था, आज सुबह जलमय जगह मस्त हवा बहने लगी
17: जी।
1: और सबको जितना भी रेडियो रिमिक सुनने वाला बात, सबको भाई लोग के सुनावल जी, रघु के सुनावल जी, हमियों के जो रोशन टेलर धनाव में काम कर रहे थे, प्रोग्राम चल रहा दिन भर चालू रहा।
17: तो प्ले करी गाना।
1: हाँ प्ले करी, यार बहुत चालू हो ना।
17: जी जी बिल्कुल, वही 2-4 कॉल बाकी बार लेके
1: टाइम देखते 12:30 तक।
17: चले ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद, सो मैं कॉल करी।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
11: Now pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
11: Pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up.
13: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: नमस्ते मैम।
15: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिट 90.4 FM में।
14: कैसी हैं?
15: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
14: मैं भी बढ़िया हूँ। नाश्ता पानी हो गया?
15: हाँ जी, मेरा तो खाना हो गया है। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
14: ये इश्क बराबर दर्द भी है, रात दिन सताए
15: जी, और सुनवाना भी है
14: आपको, सभी को रेडियो रिंजिट सुनने वाले
15: जी। और नाम भी बता दीजिए।
14: नाम सेल्फी
15: जी। और सब बताइए, अभी क्या हो रहा था?
14: अभी तो सारा काम करके आराम करने बैठी थी,
15: जी बिल्कुल बढ़िया सोची, तो प्ले करे गाना
14: जी। जी थैंक यू,
15: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चॉइस में कॉल की।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमटिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: रंकेश गोपाल सर।
1: जी, कैसे हैं रंकेश जी?
0: बढ़िया है।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
0: जी गाना सुनना है।
1: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
0: तो नदिया का पार का गाना नहीं है जो पूरे नाव तेरे साथ? वही।
1: और सुनवाना भी है?
0: हेलो।
1: हाँ, गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: हाँ, जितना रेडियो सब लोग।
1: ओके, चलिए तो प्ले करें गाना आपके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
11: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हाँ जी नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: बोल रहे हैं
2: जी, क्या हाल चाल है योगेश जी?
1: बढ़िया।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी तो बस आराम कर रहे
2: हैं। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: कहाँ लाया मेरा यार, पहाड़ों में फिल्म है आदमी।
2: और सुनवाना भी है गाना?
1: कुछ नहीं रहा है, जी लोकेन वर्मा जी काफी रोशन
2: जी। तो प्ले करे गाना आपकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माई चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: जी मैं रूबी कुमारी बात कर रही हूँ, विलेज बैदौली से।
1: जी कैसे हैं रूबी जी?
0: मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: आपका नाम जान सकते हो मैम?
1: जी बिल्कुल जान सकती हैं, मेरा नाम सोनी है।
0: ओह थैंक यू नाम बताने के लिए, बहुत प्यारा नाम है आप। वैसे तो हम आपसे पहली बार नहीं बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, बट 2-3 मंथ हो गया ना इसीलिए।
1: अच्छा अच्छा
0: जी जी, जी गाना सुनना है।
1: जी बिल्कुल बता दीजिए गाने का नाम।
0: भोजपुरी किसी भी भोजपुरी मूवी का अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिएगा।
1: कोई भी भोजपुरी मूवी का अच्छा सा गाना।
0: जी जी, अपने फैमिली का नाम ले सकते हैं?
1: जी बिल्कुल ले सकती हैं।
0: जी मेरे बड़े भैया हैं राजकिशोर, और मेरे मझले भैया हैं पिंटू राज, मेरा छोटा भाई है मंटू राज, और मेरी बड़ी सिस्टर है सुनीता देवी, मेरी भतीजा है अमृता। हेलो
1: जी
0: जी, और मेरा भतीजा है आकाश कुमार, और भतीजी अमृता, मानवी, रितिका, इन्हीं लोगों को और आपको भी।
1: चलिए तो प्ले करेगा ना आपके।
0: जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लो मेरी चॉइस में कॉल के।
0: ओके बाय मैम।
1: ओके बाय।

0: दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87-894-18744।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
9: Now pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.

ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 80

0: 0229-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
2: जी क्या हाल चाल है सुनील जी?
1: बस बैठे थे मैम, तो अभी तो रिचार्ज वो बता रहा था 5 मिनट पहले, अभी लगा है तो फोन भी लग गया मैम।
2: चलिए अभी तो लग गया ना।
1: जी जी जी जी मैम, बहुत जल्दी लग गया मैम आज। जी तो आज फरमाइश है, गाने के बोल है याद याद याद बस याद रह जाती है, यही सुनना चाहते और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिम जिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैं।
2: ओके चलिए तो प्ले करेगा ना।
1: ओके मैम धन्यवाद।
2: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-93
7: और 90-97-61-60-02।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: एडमिशन फ्री
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: जोकर।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। राजस्व कार्यों की अब प्रतिदिन होगी समीक्षा। 25 मई से 11 जून तक सभी जिलों का मॉनिटरिंग करेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राज्य में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला। दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत रेल, गृह, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा और उच्च शिक्षा समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य वागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आगामी 25 मई से राज्य के सभी जिलों में राजस्व कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा शुरू करेगा। अभियान की शुरुआत पश्चिम चंपारण, सहरसा और वैशाली जिले से होगी। 11 जून तक चलने वाली समीक्षा बैठक की मॉनिटरिंग विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। बैठकें शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच 3 पालियों में आयोजित होंगी। इस दौरान ऑनलाइन दाखिल खारिज के लंबित मामलों, परिमार्जन प्लस के तहत डिजिटल जमाबंदी के शुद्धिकरण, ई मापी और सरकारी भूमि सत्यापन की प्रगति की जांच की जाएगी। इसके अलावा लोक भूमि अतिक्रमण से जुड़े मामलों में कार्रवाई, जन शिकायत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन, सहयोग शिविरों में मिले आवेदनों और फार्मर रजिस्ट्री अभियान की स्थिति की भी समीक्षा होगी। बिहार को स्किल हब बनाने की दिशा में आज पटना में उद्योगों के साथ सहभागिता सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और सचिव डॉक्टर कौशल किशोर ने सम्मेलन का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल और सक्षम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
1: पीएम सेतु योजना, उसके तहत 75 ITI को क्लस्टर में बांटकर उसको उन्नत करना है और उद्योग और उद्योग समूह के साथ बैठकर इस पर चर्चा की जाए कि हम किस प्रकार से, किस तकनीक से उसको करें, कैसे करें ताकि वो रोजगार से सीधे जुड़ सके। तभी आदरणीय सम्राट चौधरी और बिहार की सरकार ने जो संकल्प लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को हम 25 से 30 में रोजगार देंगे तो उसमें एक ठोस पहल हो सकेगी।
0: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को मिल रही सहायता राशि की अगली किस्त की घोषणा की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसी महीने लाभार्थी महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
2: महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए दिया गया, रोजगार भी उन लोगों ने शुरू किया। और जहां तक 2 लाख देने का सवाल है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी महीने में उनको 2-2 लाख रुपया का जो सेकंड राशि, वो सेकंड राशि उनको भुगतान किया जाएगा। और पहला किस्त गया तो दूसरा किस्त भी जाएगा 20,000 रुपये का, तीसरा किस्त जाएगा 40,000 रुपये का और चौथा किस्त जाएगा 60,000 का और पांचवा किस्त जाएगा 80,000 का। यानी 5 किस्तों में 2,10,000 रुपया।
0: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। कुंदन कुमार को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि डॉक्टर बी राजेंद्र को निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीलेश रामचंद्र देवरे को बिहार राज्य आवास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार श्रीवास्तव को वित्त विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। सीमा त्रिपाठी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अरविंद कुमार वर्मा को उद्योग विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि इनायत खान को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य में आईपीएल टीम बनाने की उद्योगपति अनिल अग्रवाल की पहल को सरकार का समर्थन भी मिलने लगा है। श्री अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार की क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देने की बात कही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार क्रिकेट को लेकर स्पष्ट विजन और मिशन मोड में काम कर रही है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य का खेल विभाग इस पहल के साथ मजबूती से खड़ा है और बिहार की आईपीएल टीम बनाने में हर संभव सहयोग देना चाहता है।
3: हमारे मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने इसका स्वागत किया है। इस सोच को आगे बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं खेल मंत्री और एक खिलाड़ी होने के नाते इसका पूर्णतः स्वागत करती हूँ और मैं पूरा आश्वास उन्हें भी देना चाहती कि यदि आप इस तरह की आईपीएल टीम को लेकर बिहार के नाम से आगे बढ़ाते हैं, बिहार के बच्चों को खेलने का एक अवसर एक मौका देते हैं, बिहार सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और हर संभव प्रयास करेगी कि बिहार में हर खेल, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और खेल, उसके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते रहे और बिहार का नाम गर्व से ऊंचा।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक ओर जहां दक्षिण बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं उत्तर बिहार में अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई है।
1: दिनांक 23 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका, जमुई, लखीसराय,

0: इधर बेगूसराय जिला प्रशासन ने भी 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11 बजे के बाद पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 मई तक लागू रहेगा। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन ने 23 मई से सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को 10:30 तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड पर रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। कटिहार रेल मंडल के प्रवर मंडल रेल प्रबंधक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 10 जून से 14 जून तक 13 जोड़ी से अधिक एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 12 जोड़ी ट्रेनों का मार्ग 7 जून से 13 जून तक बदला गया है। रेल प्रबंधक ने बताया कि जून के बाद ट्रेन सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद है।
1: कि कटिहार मनिया और कटिहार दनखोड़ा सेक्शन में हमारे यहाँ पे एनआई वर्क किए जा रहे हैं। ये कार्य जो अभी सिंगल लाइन सेक्शन है उनको डबल करने के लिए किया जा रहा है। जहाँ अभी एक लाइन है वहाँ पे दूसरी लाइन भी आ जाएगी। कटिहार मंडल में 13 पेयर गाड़ियों का कैंसिलेशन किया गया है और एक पेयर गाड़ी का पार्शियल कैंसिलेशन या शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया है और 60 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है जिससे कि इस कार्य को पूरा किया जा सके। इसमें जो हमारी एक ट्रेन है शॉर्ट टर्मिनेट हुई वो कोलकाता जोगबनी ट्रेन है जो कि पहले जोगबनी तक जाती थी। अभी इसको कटिहार तक शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। ये गाड़ी यहीं से कोलकाता के लिए भी जाएगी और वापस जोगबनी ना जा करके यहीं से चलाई जाएगी।
0: आज महान समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की जयंती पर राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर जाति व्यवस्था, छुआछूत और अंधविश्वास का व्यापक विरोध किया। उनका सामाजिक सुधार, सती प्रथा के खिलाफ अभियान, बाल विवाह का विरोध और ब्रह्म समाज की स्थापना जैसी उल्लेखनीय पहल अविस्मरणीय योगदान का प्रतीक है। उनके जयंती पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। जिलाधिकारी और सिवान सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कुल 7 मामलों की सुनवाई कर सभी मामलों का निष्पादन कर दिया। जिला प्रशासन ने बताया कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली के तहत नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है ताकि लोगों को समयबद्ध न्याय और राहत मिल सके। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रोहतास जिले में अलग अलग कार्रवाई करते हुए सासाराम CO आकाश कुमार रोनियार और उनके सहयोगी सोनू कुमार के साथ साथ सदर अस्पताल सासाराम के एक कर्मी सतीश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के हरिणय सीमा के समीप सरकारी भूमि पर अवैध रूप से दुकान निर्माण कर वर्षों से रंगदारी और अवैध वसूली करने वाले 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में गठित जिला धावा दल की टीम ने कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड क्षेत्र से बाल श्रमिकों को मुक्त कराया और नियोजक पर प्राथमिकी दर्ज की। अररिया जिले में परमान नदी पर बने झमटा महिषाकोल पुल का मुख्य पाया धंस जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित वर्ष 2022 के इस पुल में दरारें आने की सूचना है, हालांकि वाहनों की आवाजाही जारी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। राजस्व कार्यों की अब प्रतिदिन होगी समीक्षा। 25 मई से 11 जून तक सभी जिलों का मॉनिटरिंग करेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राज्य में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला। दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
5: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
6: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
5: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
6: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
5: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
6: जहां हर निवाला कहे वाह।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99 393 65 93।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
1: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अफसर अली। और साथियों, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से रेडियो रिमझिम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूं और यहां एसी भी चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा है। दोस्तों, सुबह जब मैं घर से निकला तो लगा कि आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा लगा कि आज तो हालत खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ 10 बजे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर सिर पे खड़ा है। क्या साथियों, आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। श्रोताओं, मुझे याद है पहले गर्म सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आसपास।
1: अरे आरजे बाबू, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी है तो पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
0: ठीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात मुझे अब भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या ये सब मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की इसमें कोई भूमिका भी है। सच बताऊं तो अब ये गर्मी मुझे डराने लगी है, ये पहले जैसी नहीं रही।
1: देखिए आरजे, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वो हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता ये है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं। जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: ओह, तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहे हैं।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है। ओ, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ आरजे, यही सच्चाई है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित हैं, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
0: अच्छा भाभी, अब मुझे ये बताइए कि ये लू क्या होता है? हमने अक्सर सुना है लोग कहते हैं कि लू लग गई, उसको लू लग गई, इसको लू लग गई, लेकिन असल में ये शरीर के अंदर होता क्या है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए गंभीर खतरा है।
0: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि हम सबके लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: देखिए आशी, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
0: अच्छा दीदी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की तो बात की, लेकिन कई बार हमने सुना है कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और इसको कब लेना चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
0: मतलब ये कि ये सिर्फ बीमारी में ही नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है।
1: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर, ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है।
1: बिल्कुल आरजे, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
0: हाँ ये तो सही बात है, अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। लेकिन दीदी, क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
1: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं और जब भी निकले तो सिर को ढक कर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
0: ये तो ठीक है, लेकिन खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की भी कमी नहीं होने देते।
0: अच्छा भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, रिक्शा चलाने वाले लोग, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा, उनका क्या?
1: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वो अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी छांव मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
0: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
1: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
0: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें।
1: ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और भी अच्छा। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
0: अच्छा भाभी, एक और बात बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं?
1: अरे आरजे, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: तो भाभी, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना वो भी झेलते हैं जितना हम।
1: बिल्कुल आजी, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दें तो वो किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवन दान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
0: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत जरूरी बात समझाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो मैं बताना चाहूँगा, हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई बच्चा हो या फिर कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर हो, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत है। साथियों, याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। भाभी, आपकी बातें सुनकर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने कोई ऐसा मसला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो?
1: हाँ आरजी, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव में पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। धूप तेज थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
0: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
1: हाँ आरजे, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं, गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
0: साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसलिए आज से ही ये तय कर लीजिए, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
1: और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाएं, तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, और जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान देंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्मार्ट संस्था द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और साथियों, अब वो समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो हम फिर मिलेंगे आप सभी से इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और याद रखिए, पानी पीते रहिए, छांव में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहता है सुनो दिल से।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
7: कहाँ पर?
6: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
7: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
6: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
7: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
8: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
9: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित डॉक्टर अंबेडकर चेयर कुछ पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम हम आपको बता दें, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर चेयर, ये है 5 वर्ष की अवधि पर आधारित और पदों की संख्या 1 है, श्रेणी होगी खुली हुई श्रेणी है ये। दूसरा पद है डॉक्टरल अध्येता का और पदों की संख्या यहाँ पर है 2, श्रेणी खुली हुई है। पात्र उम्मीदवार जो पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन पत्र के साथ 10 जून 2026 तक उन्हें भेज देना है। इस विषय के विकल्प तौर पर पूर्ण आवेदन पत्र आप भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं jnujaipur.ac.in/dr-ambedkar-chair। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं jnujaipur.ac.in पर। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है। फैकल्टी पदों के लिए ये विज्ञापन है, एसोसिएट प्रोफेसर, इनके लिए SC ST NC OBC EWS PWBD इन सब के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए ये विज्ञापन है। सहायक प्रोफेसर के लिए भी नियमित और संविदा विजिटिंग के लिए भी विशेषज्ञता होनी चाहिए, उनके पास कॉरपोरेट फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी, टाइम सीरीज इकोनॉमिक्स, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर डिग्री होनी चाहिए। गैर शिक्षण की बात अगर करें तो पद का नाम हम आपको बता देते हैं, निदेशक के निजी सचिव पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर रिक्ति है 1 और अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष। मानव संसाधन अधिकार अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत ये आते हैं और कुल रिक्ति यहाँ पर भी एक ही है, 40 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत एक स्थान यहाँ पर रिक्त है, 40 वर्ष यहाँ अधिकतम आयु सीमा है। सहायक सिस्टम विश्लेषक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान रिक्त है 40 वर्ष के लिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन एवं प्रशासन के लिए जो कि पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां यहां पर भी एक है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। लेखा सहायक के लिए भी 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, एक स्थान रिक्त है। और सहायक मानव संसाधन पे लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान रिक्त है 35 वर्ष, इसमें अधिकतम आयु सीमा है। संविदा आधार पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पद जो है उसकी जानकारी आपको दें, अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां हैं एक, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी छात्र एवं शैक्षणिक मामले के लिए पे लेवल 7 है और कुल रिक्तियां यहां पर एक है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। प्लेसमेंट अधिकारी पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां एक है और 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। सहायक विद्युत अभियंता पे लेवल 7 है, 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। पुस्तकालय सहायक के लिए पे लेवल 4 है, कुल रिक्तियां एक है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। आवेदन विंडो खुल चुका है, 8 जून 2026 तक अपने आवेदन दे देने हैं। संस्थान का वेबसाइट पर भी समस्त जानकारी अपलोडेड है, www.igidr.ac.in/careers पर जाएं और वहां से समस्त जानकारियां ले सकते। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
13: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
14: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
15: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
16: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
15: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
16: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
17: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
18: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
19: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
18: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
20: प्रसाद क्लिनिक,
21: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
20: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार।

0: बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।

भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी के सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिन्दू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वाग देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उनपे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
17: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
16: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
17: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
14: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
15: क्यों, क्या हुआ है?
14: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
15: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
14: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
6: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
18: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। शिक्षा मंत्री ने विद्युत सौदाह गृह और स्टेडियम का किया शिलान्यास। 635 लीटर शराब के साथ चार तस्कर गिरफ्तार। लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ भी एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। मारपीट और हत्या के मामले में तीन आरोपी पकड़े गए। दो विकास मित्रों को मिला नियोजन पत्र। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज अपने विधानसभा क्षेत्र बैकुंठपुर में आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने डुमरिया में नारायणी नदी के घाट पर विद्युत सौदा गृह का शिलान्यास किया, तो वहीं रेवतीत गांव में आधुनिक स्टेडियम के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधा, प्रशिक्षण और मंच उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और इसी क्षेत्र में उनके विधानसभा क्षेत्र के भी बच्चों को खेल के क्षेत्र में बेहतर करने की दिशा में यह स्टेडियम उनकी सहायता करेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय विकास और जन सुविधाओं के विस्तार का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर लगातार शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही भारी मात्रा में शराब को भी जब्त किया गया है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने NH-27 पर ओवर ब्रिज पुल के पास छापेमारी करते हुए 635 लीटर से अधिक देशी शराब को बरामद किया। साथ ही इस मामले में जिन चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें दो कार को भी पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें एक कार का चालक दीपक कुमार और दूसरा सोनू कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों गजेंद्र सिंह के पुत्र हैं और गढ़ मुकेश्वर आदर्श नगर थाना गढ़ मुकेश्वर जिला पाकुड़ के रहने वाले हैं। दूसरी गाड़ी का चालक अजय कुमार पिता नरेश कुमार जो गढ़ी सराय गोहान थाना सदर गोहान का रहने वाला है और चौथा विशाल कुमार पिता अजीत कुमार यह भटगांव थाना सोनीपत, ये दोनों सोनीपत हरियाणा के निवासी हैं। इनकी कार को भी जब्त कर और चारों आरोपियों के पास से मिली शराब को जब्त करने के बाद इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने भी 108 लीटर शराब के साथ दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मंगलपुर गंडक नदी के पास छापेमारी करते हुए 108 लीटर देशी शराब को बरामद किया। इस दौरान दो शराब तस्करों जिसमें एक बीरबल कुमार प्रसाद पिता मैनेजर मुखिया साकिन सिहोरवा थाना जादवपुर और दूसरा धर्मवीर कुमार पिता विष्णुदेव मुखिया साकिन जादवपुर शुक्ल थाना जादवपुर को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है और आगे इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कटिया थाना की पुलिस ने 8 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसकी भी मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान ग्राम दुहौना पुल के पास एक मोटरसाइकिल से शराब पकड़ी। इस दौरान अभियुक्त प्रिंस कुमार पिता भीम कुमार साकिन कटिया वार्ड नंबर 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसकी मोटरसाइकिल शराब को जब्त कर इस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर माझा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शाहपुर बाजार में एक युवक को लोडेड पिस्टल, दो मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस तथा एक बड़ी चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के मुसहरी बाजार निवासी मानकी राम का पुत्र मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार इस इलाके में लोगों में दहशत फैलाने की नीयत से पिस्टल, मैगजीन और चाकू इत्यादि लेकर घूम रहा था। पुलिस अब इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर इस पर आर्म्स एक्ट के मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके पास से मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त किया है और पुलिस इसके पूरे कुंडली को खंगाल रही है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने बामो गांव में आपसी विवाद को लेकर मनोज शाह पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर उनकी हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बामो गांव में आपसी विवाद को लेकर मनोज शाह की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की गई थी, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनका इलाज चल रहा था, इसी दौरान उनकी मौत हो गई थी और इलाज के दौरान मौत के बाद पुलिस ने इसमें कानूनी प्रक्रिया करते हुए हत्याकांड का मुकदमा दर्ज किया किया था और इसी मामले में पुलिस ने मानवीय साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त ग्राम केरवा थाना तरैया जिला सारण में छुपे हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने तरैया थाना क्षेत्र के केरवा गांव में छापेमारी की और वहां तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी जितेंद्र रावत पिता स्वर्गीय मोहन रावत, दूसरा बलेश्वर रावत पिता बहारन रावत और तीसरा पुंदेव रावत पिता स्वर्गीय जमुना रावत, ये सभी बामो गांव के ही रहने वाले हैं। इन्हें तरैया से गिरफ्तार कर पुलिस लाई है और आज पूछताछ के बाद इनको इन तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मुसा NH 27 पर ओवर ब्रिज के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गया, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकरा गई। इस घटना में बरौली थाना क्षेत्र के सरिया नरेंद्र गांव निवासी रंजय कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं अमरेश ठाकुर गंभीर रूप से जख्मी है। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। दोनों युवक उत्तर प्रदेश से अपने घर लौट रहे थे और सासा मुसा के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिससे यह हादसा हो गया। घटना के बाद मृतक रंजय कुमार के परिवार जनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत महादलित विकास मिशन के तहत विजयपुर प्रखंड के नौतन पंचायत में पल्लवी पिता रामचंद्र राम एवं पंचदेवरी प्रखंड के मगहिया पंचायत में प्रमोद कुमार पिता डोमा राम को विकास मित्र के पद पर नियोजित किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने नियोजित दोनों ही न्याय मित्रों को नियोजन पत्र देते हुए इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही दोनों पदाधिकारियों ने नव नियोजित विकास मित्रों को महादलित परिवारों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की सलाह देते हुए शुभकामना दिया और नियोजन पत्र पाकर दोनों विकास मित्र बहुत खुश हुए। युद्ध के दौरान देश में आ रहे डीजल पेट्रोल और गैस की समस्या को लेकर अब सरकार अलर्ट हो गई है। सभी विभागों के प्रशासनिक पदाधिकारी भी जनता से गैस डीजल पेट्रोल इत्यादि की खपत को नियंत्रित करने का निवेदन कर रहे हैं और स्वयं भी इसका पालन कर रहे हैं। जगह जगह नेता पदाधिकारी डीजल पेट्रोल बचाने के लिए मुहिम में जुटे हुए हैं। अब इसी मुहिम में न्यायपालिका के न्यायाधीश गणों का भी अभियान शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार को सुबह ऑफिसर्स कॉलोनी से सभी न्यायाधीश गण डीजल पेट्रोल बचाने के लिए अभियान शुरू करते हुए वहां से पैदल मार्च करेंगे और पैदल ही न्यायालय में पहुंचकर न्यायिक कार्यों में अपना सहयोग करेंगे। इसके लिए सभी न्यायाधीश गणों ने तैयारी की है। कल सुबह 7 बजे हजियापुर और बंजारी ऑफिसर्स कॉलोनी से न्यायाधीश गण पैदल न्यायालय कार्य में आने वाले हैं। इधर थावे थाना की पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि थाना गेट के पास ही वाहनों की जांच की जा रही थी, इसी दौरान एक मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। वाहन से संबंधित कागजात की जाँच की गयी, जिस पर आरोपी ने सही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसके चोरी के वाहन को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी दीपक कुमार है, जो लछवार के गौरी पंडित का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस केंद्र गोपालगंज में पुलिस सभा का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस के विभिन्न थाना एवं शाखाओं से उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा कर्मियों की ड्यूटी, आवास, स्वास्थ्य, अवकाश, संसाधन एवं अन्य प्रशासनिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा एवं जन संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। इधर थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला NH 731 पर बर्फ फैक्ट्री के पास भी एक हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है। स्थानीय लोगों के मदद से युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक नशे की हालत में था और कार की हेडलाइट भी देर शाम को बंद थी, जिसके वजह से यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर गोमती नगर ट्रेन में मिली एक सरकटी हुई शव का पुलिस ने पता लगा लिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑनर किलिंग में पिता ने ही अपने पुत्री की हत्या कर शव को ट्रेन में रख दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता बीगन अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र के गाँव का रहने वाला है और पेशे से ई रिक्शा चालक है, उसकी 16 वर्षीय बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। कुछ दिनों पहले बीगन ने अपनी बेटी को किसी अपरिचित युवक से मोबाइल पर बात करते हुए देख लिया था, जिससे वह काफी नाराज था और उसने बेटी को डांट फटकार लगाने के साथ ही उसको घर से बाहर आने जाने पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। इसी बीच 17 मई को बीगन रोजाना की तुलना में समय से पहले घर पहुंच गया। जब उसने बेटी को घर में नहीं पाया तो पत्नी से पूछा। पत्नी ने बताया कि वह अपनी सहेली से मिलने गई है। इस बात से आग बबूला हुए बीगन ने उसी रात धारदार हथियार से गला रेत कर बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। शव के टुकड़े किए, सिर को तालाब में फेंक दिया और धड़ को ट्रेन में एक बक्से में बंद कर लोड कर दिया। बताया जा रहा है कि शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी पिता ने कई टुकड़े कर दिए। आरोपी ने सिर को काट कर पास के ही एक तालाब में फेंक दिया। धड़ और हाथ पैर दोनों को अलग अलग काट कर प्लास्टिक और कपड़ों में लपेट कर एक बड़े साइज के स्टील के बक्से और बैग में पैक कर दिया। इस खौफनाक साजिश में उसने पड़रौना कोतवाली की रहने वाली अपनी बहन नूरजहां और बहनोई मजीबुल्लाह को भी शामिल किया। 17 मई की रात करीब 9:30 बजे तीनों ई रिक्शा से तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे और शव से भरे बैग को छपरा कचहरी गोमती नगर एक्सप्रेस में रख दिया। इसके बाद आरोपी की बहन और बहनोई भी उसी ट्रेन में बैठ गए और लखनऊ से गोमती नगर स्टेशन पर शव को लावारिस छोड़कर वापस लौट आए। अब पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद इस मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है और मृतिका के सिर के टुकड़ों को बरामद करने के लिए स्थानीय तालाब में गोताखोरों के मदद से जांच पड़ताल की जा रही थी। रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त जांच में पूरी सच्चाई सामने आने के बाद अब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त हरिंदर राय को गिरफ्तार किया। यह महारानी पड़ोही गांव के जलेश्वर राय के पुत्र हैं और इनके घर से ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आज पूछताछ के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शिक्षा मंत्री ने विद्युत सौदाह गृह और स्टेडियम का किया शिलान्यास। 635 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ भी एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। मारपीट और हत्या के मामले में 3 आरोपी पकड़े गए। 2 विकास मित्रों को मिला नियोजन पत्र। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
19: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
19: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
19: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
19: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
20: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
0: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
21: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
22: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
21: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
23: अब बेटा बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
24: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
25: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
26: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797065775।
27: सुनिए सुनिए सुनिए,
28: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
27: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
28: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
27: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
29: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
30: कहाँ पर?
29: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
30: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
29: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
30: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
29: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
31: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सू SMS फरमाइश के साथ। समय 9:25 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश करना है और ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम सुनाएं। और आप लोग कई श्रोतागण हमारे कई निवेदन करने के बाद भी नए गाने के फरमाइश करते हैं लो। तो अब से हमने सोचा कि जो भी गाने के फरमाइश नए आए, यदि हम उस गाने को प्ले कर भी दें तो उसको बीच में रोका जाएगा और पुराने गाने के फरमाइश को प्ले किया जाएगा। फिलहाल कुछ से मैसेज हमारे पास रिसीव नहीं हुए हैं तो अपने तरफ से गाने को प्ले करते हैं एक प्यारा सा और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप भी टेक्स्ट मैसेज करें और बिल्कुल हम आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल पहला गाना एंजॉय करते हैं हम सभी।

रेडियो रेम झीम 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुनने थे हम सभी ओल्ड इज गोल्ड। और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे और फिर गाने मैसेज में फरमाए गए गाने को प्ले करेंगे। और यहाँ पे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है, मुझको दफन कर वो जब वापस जाएंगे। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले दीपक एंड जेलर जी हैं और कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ माय सॉन्ग। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और ऐसे गाने की फरमाइश नहीं करते हैं। और जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन ऐसे गाने की फरमाइश आज नहीं करना चाहिए था। खैर आपकी फरमाइश है तो हम पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हमें भी सॉन्ग सुनना है, सुना सकते हैं क्या? यदि फरमाइश आप सभी का पहुंचता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं सुनाएंगे। और हाँ, ध्यान रखना है कि आप यदि एक सप्ताह में गाने सुन चुके हैं तो दूसरों को भी मौका दें ताकि दूसरा कोई भी सुन सके अपनी फरमाइश जो एक सप्ताह में नहीं सुने हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हमें भी सॉन्ग सुनना है। ओह चलिए, आपकी मैसेज हमने तो रीड कर दिया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और आज मेरी भी एक वीक कंप्लीट हो चुकी है, तो आज मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का नेम है नाना करते प्यार है मैं कर गई, फ्रॉम द मूवी धड़कन से। और मैं पहले मैसेज इसलिए की हूँ ताकि बाद में मैसेज करने को टाइम नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ सर मेरी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, और क्योंकि मैं जा रही हूँ। चलिए, और हम लोगों को भी चाहिए, मछली बनाने जा रही हैं। और कह रहे हैं कि भाई लेट से थोड़े मछली लाए हैं, बिल्कुल बनाइए और हम लोग को भी पार्सल करिएगा। आगे मैसेज और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि रात को सब अपनी अपनी मोहब्बत से बात करके सोते हैं, और एक हम हैं जो अपनी मोहब्बत को याद करते करते सो जाते हैं। गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ सुना दीजिएगा। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले पायल कुमारी बढ़िया से गाना का फरमाइश करती हैं पवन सिंह का, तो कौन से गाने सुनना है गाने का नाम बता देती तो बेहतर रहता ताकि आपके पसंद के गाने हम सुना सकें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हीरा पाकड़ से, अखिलेश कुमार टुनटुन सॉन्ग, तो टुनटुन जी का सॉन्ग हम नहीं सुना सकते हैं, आप पुराने गाने का फरमाइश करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल हम दीपक एंड जेलर जी के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनकी पसंद के गाने।

रेडियो एमजीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से, तो बिल्कुल आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश करेंगे आप सभी, तो पुराने गाने या 90s के गाने के फरमाइश करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं और अगले गाने की भी फरमाइश हम प्ले करते हैं। आगे गाने की फरमाइश करती हैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और गाने का बोल देती हैं नाना करते प्यार है मैं कर गई। और आगे मैसेज कुछ पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल कर

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे गुलाम हुसैन की, और उनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है हमको आवाज़ दे तू कहाँ है सनम। और

0: इस गाने को डेडिकेट करते हैं, सबसे पहला नाम देते हैं मशरूम कौसर जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, नौसाद भाई, जगदीप, आयुष, प्रिंस, लक्की, समीर, शाकिब, रूबीना ब्यूटी, हिना गुड़िया, साजदा, गुलशन, शबीना, यास्मीन, सलेहा, आफरीन, अरिशा और सोनोविया आपको भी। चलिए हम भी सुनेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कुछ लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, मैं शिवांश चौधरी लालगंज मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हर रात एक नाम याद आता है, हर रात एक नाम याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम को याद आता है, सोचते हैं कर लेंगे दूसरी मोहब्बत, लेकिन फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। हेलो हाय सुनो भाई जी, कार्यक्रम से हम भी जुड़ गए हैं और मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार सुझाव शिकायत।
0: हाय हेलो सर जी, प्रणाम सलाम, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिस्टनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती ओझोलिया से, और बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि फूल गुलाब को हो या चमेली, फूल गुलाब का हो या चमेली, मन से बसा लो रेडियो रिमझिम, हंसते रहो अकेली, नमस्ते। ओह थोड़ी सी मिस्टेक, कहते हैं कि फूल गुलाब का हो या चमेली, मन में बसा लो रेडियो रिमझिम, हंसते रहो अकेली, नमस्ते नमस्ते। खुद दर्द कितना भी आए हंसते रहिए, लाख परेशानियां आए हमेशा मुस्कुराते रहिए। गाना के फरमाइश करते हैं, फूल तुमने भेजा था खत में फूल नहीं, सभी श्रोताओं के साथ सुनना चाहते हैं। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले सावन शर्मा जी, और आप बने रहे हमारे साथ, कोशिश से आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि कैसे हैं सर, सर आफरो मामा मौजम से, तो बिल्कुल बढ़िया आप सभी के बीच उपस्थित हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू जगह हो तो हमें भी एक सॉन्ग सुना देंगे फिल्म, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, जगह बनता है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। धर्मवीर मूवी से रफ़ी जी की आवाज़ में गाने के फरमाइश करते हैं महबूबा, बन रहे हमारे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे गुलाम हुसैन के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके गाने के साथ, इंजॉय करते हैं हम सभी।

रेडियो MGM 94 FM सुन रहे हैं आप सभी और प्यारे गाने सुन रहे थे कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में। और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से। और आगे गाने के फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है भिड़िया से पायल कुमारी की, और उन्होंने नए गाने के फरमाइश किए जिसके कारण की फरमाइश को हम रुक रहे हैं और अगली फरमाइश हम पूरी करते हैं। निर्मला कुमारी जादवपुर से गाने के फरमाइश करती है अखियों के झड़ोके से, तो इनके गाने हम सभी सुनेंगे। और कुछ मैसेज पहुंचे हुए देखा जाए, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, लेकिन इनके तरफ से लिखा गया है कि माय बेस्ट सॉन्ग मुझको दफना कर वो वापस जाएंगे, फंटास्टिक लाजवाब दर्द भरा सॉन्ग, और बिल्कुल आपको अपने जन्मदिन पर आपके मन मर्जी का सॉन्ग सुनना चाहिए, अपने मन का सारा दर्द निकाल कर फेंक देना चाहिए, मन हल्का होगा। और मेरे तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैसेज करती हैं निशा उसका गांव प्रखंड से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज में लिखा गया है कि पवन सिंह का, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। पवन सिंह का ही एक गाने हमारे श्रोतागढ़ फरमाए हुए हैं और उन्हीं के साथ आपको भी डेडिकेट करेंगे हम। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं निर्मला जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने, क्योंकि समय भी देखा जाए तो बहुत कम है।

कभी प्यारे गाने सुनने हम सभी रेडियो रेम छेम 94.4 FM पे शो चल रहा है। इसमें इस फरमाइश का और समय जो है काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश पवन सिंह की आवाज़ में ही पहुँचा हुआ है और मैसेज करती हैं निशा घर कोनवा से और गाने के फरमाइश करती हैं उमरिया के रोग हर नजरिए से होला। और एक और हमारे श्रोता पायल, इनके तरफ से भी पवन सिंह की आवाज़ में कोई भी गाने सुनने हैं तो चलिए आपको भी डेडिकेट करते हैं। आप दोनों इंजॉय करें इस गाने के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

रेडियो MCM 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है, इसमें फरमाइश का और पवन सिंह की आवाज़ में गाने अभी हम सभी सुन रहे थे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि थैंक यू सर जी, आपको धन्यवाद है रेडियो MCM सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है मैसेज में, सर हमारा तो रोग है रेडियो MCM सुनो दिल से, बिना सुने नींद ही नहीं आती। ओ शिवांश चौधरी लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, और गाने की भी फरमाइश इनके तरफ से है। और गाने का बोल देते हैं, तेरा गम अगर ना होता तो मैं शराब ना पीता। चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आपके साथ भी एंजॉय किया जाए। और देखा जाए तो यहाँ पे समय जो है 10:14 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में, तो कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो गया है। और अंतिम गाने आप ही का रहेगा। फिलहाल आज जो भी मैसेज हमारे श्रोतागढ़ किए हुए हैं जिनके फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सभी से क्षमा चाहेंगे। और फिर हम अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो MCM 94.4 FM, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान,
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: संसार से सुनर सिंगार सहज सुहाला, तू जब ताके लो तत्व से मोहब्बत हो जाए।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: त तू जरे जेबो
1: ठीक बचल
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनिया और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
2: ठीक है, अपन बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है। नेहा बात कर रही है
2: जी। पहचान गए।
1: और सब बताइए, खाना पीना हुआ कि नहीं? अभी
2: अभी खाना नहीं हुआ, नाश्ता हुआ।
1: अभी नाश्ता हुआ है। काम धंधा निपटा लिया? जी जी, मेरा हो गया है।
2: हाँ, काम निपटा लिया है।
1: चलिए बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना है अभी आपको?
2: गाना सुनना है हमसे तुमसे प्यार हो गया, यही फिल्म का गाना।
1: हमको तुमसे प्यार हो गया इस मूवी से, कोई भी गाना की गाना का नाम बताइएगा।
2: गाना माहिर है
1: जी,
2: यही गाना।
1: और गाना सुनवाना भी है?
2: गाना आपको जितना रेडियो रिमझिम आरजे है सब दोस्त सुनता है सबको।
1: ओके, चलिए तो प्ले करें
2: जी। नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल की।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: गुलाम हुसैन भाई से बोल रहे हैं, मुझे गाना सुनना है।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: हमारा भी बढ़िया है। क्या हो रहा था?
1: अभी काम कर रहे हैं हम। मुझे सुनना है, क्या तुम्हें पता है गुलशन ये वाला गाना सुनना?
0: जी, और गाना सुनवाना भी है
1: जी। सबसे पहले आपको मासूम कौशल जी, अरमान कमरान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, रुबना जी, दीप्ति जी, हिना जी, गुड़िया, अमनम जी, अमिका जी, सभी को सुनवाना चाहता
0: हूँ जी। तो प्ले करे गाना आपके?
1: जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चॉइस में कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
1: Hello, hello, hello, hello, hello.
3: Bhage bhage phirte hain.
4: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार,
5: नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
6: जी मैं सुधीर बोल रहा हूँ, करीमगंज जिला देवघर झारखंड से।
5: जी क्या हाल चाल है सुधीर जी?
6: हालचाल तबीयत कुछ गड़बड़ है, मैं इसलिए सोचे 11 बजे के बाद लगाएंगे तो बहुत बिजी 12 बजे के बाद लगी।
5: जी जी, इसलिए तभी तो कॉल लग गया ना।
6: जी कॉल तो लग गई। जी
5: जी जी, तो क्या हो गया आपको अभी?
6: जी आज सुना दीजिए, मैं प्यार के गाना आस्था भोसले और किशोर कुमार की आवाज में के बोल हैं, सारा दिन सताते हो रातों को जगाते हो, तुम याद बहुत आते हैं।
5: जी और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
6: जी सबसे पहले मैं आपको आपके रेडियो रिमझिम की टीम को और जितने भी रेडियो रिमझिम के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
5: ओके चलिए, तो प्ले कर दिए गाना आपके।
6: थैंक यू मैम,
5: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिल्म माय चॉइस में कॉल किया।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम्स 104 FM में।
1: जी हम बनारस से।
0: चल रहा
1: ठीक है और सुनाइए, बढ़िया है?
0: बढ़िया है,
1: बहुत तेज धूप निकल रहा है, गर्म बहुत बढ़ रहा है। धन्यवाद
0: जी, बिल्कुल बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: ये मूवी है कुली नंबर वन का, गोविंदा का।
0: कुली नंबर वन से कौन सा गाना?
1: जेठ की दुपहरी में पांव जले।
0: और सुनवाना भी है
1: जी आपको, जितने श्रोता
0: जी प्ले करेगा ना ये, आज या कल में कभी भी आ जाएगा।
1: ठीक है,
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: सलामुअलैकुम।
3: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
2: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
3: जी कैसे हैं मनान जी?
2: ठीक है।
3: तो क्या हो रहा था अभी?
2: अभी आज हो रहा है, घर का पेंटिंग हो रहा है।
3: अच्छा, कुछ फंक्शन है क्या घर में? कैसे?
2: नहीं फंक्शन नहीं है, पर कोई आने वाला है।
3: अच्छा,
2: अपना रिलेटिव मतलब हमारे चाचा का लड़के लोग आसाम से आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपना घर।
3: अच्छा अच्छा,
2: आसाम में भी और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एक पुराना मेरा घर है।
3: अच्छा।
2: पूरा मतलब हवेली के जैसा बड़ा सा घर है और उसमें से हट के हम लोग अलग बनाए हैं। ये अलग घर जो हट के बनाए हैं उसमें हम पेंटिंग करा रहे हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: तो आसाम से आने वाले हैं लोग, तो कुछ तो लड़के बच्चे जो है पेंसिल से जो दीवारों पे जो है ना
3: पढ़ लिए हैं।
2: हाँ, वो पढ़ लिए हैं। तो उसे मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, तो कहे कि थोड़ा थोड़ा अब हो ही जाए ये कोट पेंट।
3: बिल्कुल।
2: तो वही पेंटिंग करा रहे हैं, उसी में लगे हैं जब तक आपका याद आ गया। आपका याद आ गया तो कभी से उंगली करीब 2 मिनट किए हैं, है ना, नींदे जा रहा था तो जब तक से आपका लग ही गया।
3: चलिए बढ़िया है।
2: हाँ, तो 3 बीट के बाद आज मतलब 3 बार हम कॉल नहीं कर चुके।
3: अच्छा।
2: आज ये सही है क्योंकि 3 बार में इधर उधर कोई काम से है ना लग गए थे, तो आज याद आया तो हमने कहा चलो आज फरमाइश करते हैं। तो कोई गाना सुनाइए मैडम, आप नहीं मन से
3: हिंदी में?
2: हाँ तो उर्दू में।
3: उर्दू में भी गाना होता है ना?
2: होता ही है। सुनाई तो सुनाइए ना।
3: अब मतलब सुने नहीं है, मैं तो ऐसे सुनी, अब मुझे नहीं पता है कि उर्दू में गाना है।
2: उर्दू में होता है वो पाकिस्तान। हाँ। वाले लोग बजाते हैं। यही है तो मैडम आज सुना दीजिए अपने मतलब से। कोई
3: अपने मतलब से। चलिए ठीक है, तो प्ले कर रहे हैं।
2: ओके
3: ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: प्रिंसिपल।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
2: hello, hello, hello, hello, hello.
4: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: अरे तो हमें परेशान कर दिए महाराज, फोन धराते धराते पूरे परेशान हो गए।
5: सर क्या अब आपकी परेशानी खत्म हो गई होगी?
6: हाँ, आई सो कॉल धराए। और सब बताइए?
5: सब बढ़िया है। तो उंगली दुख गया होगा आपका?
6: हाँ, उंगली नहीं दुखेगा, कैसे हम लोग उसी से काम है सबसे ज्यादा उंगली से।
5: हाँ, तो क्या हो रहा था अभी, ड्यूटी में है कि रूम पे है?
6: छुट्टी, आज भी छुट्टी मारे हैं।
5: आज भी छुट्टी मारे हैं?
6: हाँ, ऐसे गांव से मम्मी आई है ना।
5: हाँ।
6: तो वही थोड़ा छुट्टी किए हैं।
5: चलिए बढ़िया है, आराम करिए। तो गाना कौन सा सुनना है?
6: बबीता सागर के कोई सा गाना सुनाइएगा।
5: बबीता सागर का?
6: हाँ।
5: अब जीजा साले आप लोग बबीता सागर के एकदम फैन है लगता है।
6: और शुरू में किए तो वो बता रहा था कि रिचार्ज ही नहीं है।
5: रिचार्ज नहीं था, थोड़ा लेट चेक किए तो तुरंत रिचार्ज हो गया। तो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
6: हाँ, उन्हीं को, जीजू को सुनाना है। वो अभी बबीता सागर का, हमारा भी बबीता सागर का है।
5: चलिए तो प्ले कर रहे हैं।
6: और बारे जीजू को सुनाना है।
5: अच्छा अच्छा,
6: हाँ
5: चलिए ठीक है, तो गाना प्ले कर रहे हैं आपके।
6: ठीक है
5: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम जिम में। वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: अशफाक अलम बरारी हरके।
1: जी, क्या हाल चाल है अशफाक जी?
0: ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया।
0: मैम अगला सोमवार को हम बताए टैक्सी सारी लाल तो हम नहीं सुन पाए,
1: तो वो तो सोमवार को ही चल गया है और मंगलवार को।
0: अच्छा मैम, जी जी
1: जी, तो आज कॉल किया, आज की आने की फरमाइश बता दीजिए।
0: मैम आपका मन से
1: नहीं, आप इतना मेहनत करके कॉल किए तो आप अपना मन बताइए, बाकी अभी जो गाना सुन रहे हैं आप मेरे ही मन से सुन रहे हैं।
0: अच्छा मन मारदा के गोली फिल्म दिवासाते होली,
1: तभी होली का गाना सुनना है।
0: जी जी,
1: चलिए तो प्ले कर दे गाना।
0: जी मैम, मैम कब तक ऑनलाइन रहती हैं आप?
1: ऑनलाइन अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव में 12 बजे से आती हूँ 4 बजे तक।
0: अच्छा लाइव में, मैंने लाइव नहीं समझे
1: जो अभी बोले ना ऑनलाइन।
0: जी जी
1: जी, तो ऑनलाइन में 12 बजे से आऊंगी।
0: अच्छा 12 बजे से 4 बजे फोन लगाएंगे लग जाएगा?
1: हाँ हाँ, 12 से 4 के बीच में आप लगाइएगा तो आपका गाना तुरंत आप सुन लीजिएगा।
0: अच्छा उसमें सुन लेंगे तुरंत?
1: जी जी, और अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये शाम को 5 से 7 के बीच में सुनिएगा।
0: अच्छा ये गाना अभी बताए तो?
1: हाँ अभी अभी ये जो भेजे हैं ये 5 से 7 के बीच में चलेगा।
0: 5 से 7 बजे ले?
1: हाँ
0: ठीक है मैम,
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: बा
1: बोली
0: भर होले देवर साथे रह जाले कि ने 11 महीना मरत साथे रह मरत के मत छोड़ा
1: ओके
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के जॉन हमेशा कहला सुनी दिल से
3: Now pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.
4: Hello.
3: Pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.
4: Hello.
5: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
6: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
5: भागे भागे फिरते हैं.
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं. नंबर है 8029494911. जी हाँ 8029494911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल.
8: नमस्ते मैम.
9: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमझिम 90.4 एफएम में.
8: थैंक यू मैम. अनिल बात कर रहे हैं छोटे
9: जी जी से. कैसे हैं अनिल जी?
8: बस बढ़िया, अपना बताइए.
9: हमारा बढ़िया है सब कुछ.
8: चलिए अच्छी बात है.
9: तो क्या हो रहा है अभी? ड्यूटी में ही है?
8: हाँ ड्यूटी में ही है, लेकिन आज थोड़ा सा छुट्टी जैसा फील हो रहा है. क्योंकि डॉक्टर साहब छुट्टी थे, लेकिन अच्छा. मेडिकल तो खुला रहेगा ना?
9: हाँ वो तो खुला ही रहेगा.
8: बाकी लोग ड्रेसिंग के लिए या फिर कोई किसी का

0: हेलो सर, इसमें फोन लगा है ना?
1: जी जी बिल्कुल लगा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हाँ वही तो सुनते हैं, हमको गाना सुनना है।
1: जी सुनवा देंगे। आपके बगल में पहले रेडियो चल रही है, उसे उसकी आवाज़ कम कर दीजिए।
0: तो वो लोहा फिल्म का सुना दीजिए।
1: लोहा फिल्म से कौन सा गाना?
0: लोहा फिल्म 16 बरस वाली
1: मेरी उम्र को सलामो वाला।
0: हाँ,
1: और आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: संजय का, ग्राम फुली डुमर और इलाहाबाद का, बिहार से बोल रहे हैं।
1: जी तो प्ले करे गाना आपके?
0: ठीक कर दीजिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
4: hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्ते मैम।
7: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिंजिम 90.4 FM में।
6: थैंक यू मैम। अनिल बात कर रहे हैं छोटे
7: जी
6: से।
7: जी, कैसे हैं अनिल जी?
6: बस बढ़िया, अपना बताइए।
7: हमारा बढ़िया है सब कुछ।
6: चलिए अच्छी बात है।
7: तो क्या हो रहा है अभी? ड्यूटी में ही है?
6: हाँ, ड्यूटी में ही है, लेकिन आज थोड़ा सा छुट्टी जैसा फील हो रहा है।
7: काहे?
6: क्योंकि डॉक्टर साहब छुट्टी पे, लेकिन
7: अच्छा।
6: मेडिकल तो खुला रहेगा ना?
7: हाँ, वो तो खुला ही रहेगा।
6: बाकी लोग ड्रेसिंग के लिए या फिर कोई किसी का फ्रैक्चर है या फिर जो पेशेंट भर्ती है उसके लिए तो रहना पड़ेगा।
7: मतलब खुला तो रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आराम भी जरूरी है।
6: जी जी,
7: रोज रोज काम करके भी आदमी बोर हो जाता है।
6: हाँ, वो तो बहुत मतलब रेयर कभी इस तरह का सिचुएशन बनता है, नहीं तो रेगुलर काम करना ही पड़ता है।
7: बता दीजिए गाने का नाम।
6: गाना सुना दीजिएगा
7: जी।
6: सिंगर है ना, नया नया सिंगर है, वो साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना, वही वाला सुना दीजिएगा
7: जी। और सुनवाना भी है, डेडिकेट भी करिएगा।
6: डेडिकेट सारे लिसनर्स को।
7: जी
6: जी,
7: चलिए तो प्ले करें गाना।
6: जी मैम
7: जी,
6: थैंक यू,
7: बहुत बहुत धन्यवाद।
8: दोबारा कब मुलाकात होगी?

0: हेलो सर, इसमें फोन लगा है ना?
1: जी जी बिल्कुल लगा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हाँ वही तो सुनते हैं, हमको गाना सुनना है।
1: जी सुनवा देंगे। आपके बगल में पहले रेडियो चल रही है, उसे उसकी आवाज़ कम कर दीजिए।
0: तो वो लोहा फिल्म का सुना दीजिए।
1: लोहा फिल्म से कौन सा गाना?
0: लोहा फिल्म 16 बरस वाली
1: मेरी उम्र को सलामो वाला।
0: हाँ,
1: और आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: संजय का, ग्राम फुली डुमर और इलाहाबाद का, बिहार से बोल रहे हैं।
1: जी तो प्ले करे गाना आपकी?
0: ठीक कर दीजिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल।
0: धन्यवाद।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: कैसी हैं?
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। नाश्ता पानी हो गया?
2: हाँ जी, मेरा तो खाना हो गया है। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: ये इश्क बड़ा बजट दी है, रात दिन सताए
2: जी, और सुनवाना भी है
1: आपको, सभी को रेडियो रिमझिम सुनने वाले
2: जी। और नाम भी बता दीजिए।
1: नाम सेल्फी भिटवेरवा से
2: जी। और सब बताइए, अभी क्या हो रहा था?
1: अभी तो सारा काम करके आराम करने बैठी थी, उसी की कॉल लगा।
2: बिल्कुल बढ़िया, सोची तो प्ले करे गाना
1: जी। जी थैंक यू,
2: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चॉइस में कॉल की।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमटिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: रंकेश गोपालगंज से।
1: जी, कैसे हैं रंकेश जी?
0: बढ़िया है।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
0: जी, गाना सुनना है।
1: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
0: तो नदिया का पार का गाना नहीं है जो पूरे नाव तेरे साथ वही,
1: और सुनवाना भी है।
0: हेलो।
1: हाँ, गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: हाँ, जितना भी रेडियो में सब लोग।
1: ओके, चलिए तो प्ले करें गाना आपके।
0: जी।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
3: मैं नीता शुक्लवा से।
2: कैसी है नीता जी?
3: हम ठीक है, आप कैसे हैं?
2: मैं भी बढ़िया हूँ।
3: तो नाश्ता हो गया?
2: जी हाँ बिल्कुल हो गया है।
3: जी गाना सुना दीजिए।
2: जी सुनवा देंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
3: गाना मैं अगर मैं सही करूँ तो की गलत बात है।
2: एक बार और बताइए नाम।
3: अगर मैं सही करूँ तो की गलत बात है।
2: अगर मैं सही करूँ तो भी गलत बात है।
3: हाँ,
2: किसके आवाज में है ये गाना?
3: तो मालूम नहीं।
2: अच्छा, ये गाना आप सुनी है कि रील में सुनी है?
3: क्या
2: ये गाना पूरा सुनी हुई है कि रील में सुनी है आप गाना?
3: नहीं, पूरा सुना, मूवी का गाना है।
2: मूवी का? हाँ हाँ, अरुण धवन वाला।
3: हाँ
2: ओके ओके, ठीक है समझ गया। और गाना डेडिकेट भी है
3: आपको? जितने
2: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना।
3: जी थैंक यू,
2: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल की।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैडम
0: नमस्कार,
1: मैं मनीष प्रसाद बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोलता
0: जी। कैसे हैं मनीष जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: अभी बढ़िया है। अभी क्या हो रहा था?
1: अभी तो काम कर रहे हैं।
0: अभी आप लोगों से बातें कर रहे हैं
1: जी। मौसम क्या हाल है?
0: मौसम तो कड़ाके वाली धूप हुई है।
1: गेहूँ कट गया कि
0: काफी हद तक कट गया है, एक आधु का बाकी है किसी किसी का, बाकी सब तो निकल ही गया।
1: चलिए ठीक है।
0: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: गाना दिलवाले की जगह कोई भी सुना दीजिएगा।
0: दिलवाले से कोई भी?
1: हाँ जी।
0: और सुनवाना भी है?
1: हाँ, सबसे पहले आपको और रेडियो रेंज सुनने वाले सभी श्रोताओं।
0: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।

तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम।

के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

ना सुनी, जा जाके तू ही समझावा जा। अरे बेटी हम कहले रहली ना, ये बैल हो बैली ना।

0: हाँ तो करा लोग किसानी, हम जाता नहीं, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान, बात करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: पकड़े गर्दनिया ये छोड़ के चरनवा के बाप तोरा बाप तोरा छोड़ गईले हमरे अंगन
1: वहाँ से निकट संग हुई गवा लगनवा टूट गईले किस्मत।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल यहाँ,

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: नीरज शर्मा जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराष्ट्री महाराज जी, मैं राम कथा वाचक व फरीदाबाद से विधायक हूं। मेरे पास किसी समस्या के लिए एक पक्ष आता है और मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, तो क्या दूसरे पक्ष के साथ अन्याय है?
1: ये आपको देखना पड़ेगा कि जिस पक्ष का आप संग कर रहे हैं वो धर्मयुक्त है, वो हमारे भागवतिक संविधान से ठीक है, वो हमारे राजकीय संविधान से ठीक है। अगर ठीक है तो हम पक्ष लेते हैं, इसको बता देते हैं कि आप हमारे पास आए हो, हम उत्तम सलाह देंगे, पहले आप अपने आचरणों को सुधारिए, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आचरण हमारे राजकीय विधान के प्रतिकूल है या शास्त्रीय विधान के प्रतिकूल है तो हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। अगर अधर्म का पक्ष देंगे तो फिर आपका सहयोग नहीं हुआ, अधर्म में सम्मिलित हुए। आप हमारे पास आए हो, अगर आप हमें लगता है कि जिस बात का आप सहयोग मांग रहे हो वो शास्त्र सम्मत है और हमारे राज्य की विधान कानून के अंतर्गत है, क्योंकि आपने एक पद का नाम लिया तो राज्य की विधान से सम्मानित पद है, जितने भी लोग आपकी सेवा में आते हैं उनमें ऐसा आपका व्यवहार है जैसे एक घर का बड़ा बुजुर्ग अपने बच्चों से प्यार करता है, वैसे

0: जितना आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र का धर्मी अधर्मी पापी उत्तम अधम सब आपके प्यार और दुलार और शासन तीनों के अधिकारी हैं। अगर वो अधर्म युक्त आचरण करता है तो जैसे अपना बच्चा गलत करता है तो दो चार थप्पड़ लगाते हैं, ऐसे ही भाव से उस पर शासन करेंगे। स्वार्थ, किसी भी तरह का प्रलोभन, किसी भी तरह का सांसारिक संबंध दबाव, ये अगर है तो फिर वो ठीक निर्णय नहीं कर पाएगा। ठीक निर्णय तभी कर सकता है जब कानून और भागवतिक विधान दोनों का परिचय प्राप्त हो और सामने वाला जो सहयोग मांगने आया है वो अधर्म से हटकर धर्म में चलने वाला है, फिर चाहे हमारे प्राण चले जाए हम उसका सहयोग करेंगे और आगे उसको बढ़ाएंगे। और यदि अधर्म युक्त है तो वो या तो गलती स्वीकार करे और दंड भोगे, और अगर ऐसा लगता है कि एक बार क्षमा करने से यह अधर्माचरण छोड़ देगा और वास्तविक छोड़ देगा, इसका अधर्माचरण करने का स्वभाव नहीं लेकिन भूल हो गई, तो सहयोग करना चाहिए। उसमें बहुत विचार करना होगा, नहीं तो कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर भाग मिलता है, चाहे वो शुभ का हो या अशुभ का हो। जैसे कभी वृंदावन जाइए आप, एक बार बिहारी जी के दर्शन कीजिए, सत्संग सुनिए, देखो प्रयास करेंगे। दूसरा प्रयास नहीं, बड़े भाग्य की बात, सुनो अगर तुम्हारे पैसा नहीं तो हम व्यवस्था कर देते हैं, एक दिन का काम हम देख लेंगे, तुम जाओ तो वृंदावन। और वो वृंदावन आया तो वो आया, परिक्रमा किया, दर्शन किया, सत्संग सुना, उसको जो लाभ मिलेगा वो प्रेरणा देने वाले अनुमोदन करने वाले को बराबर मिलेगा। इसीलिए शास्त्रीय विधान है, अगर आप अधर्म का साथ देते हैं तो आपके ऊपर अधर्म का ही दंड मिलेगा आपको, कोई भी हो, कोई भी हो। और अगर आप धर्म का साथ देते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा कर लेगा। अगर कोई आपके प्रतिकूल होना चाहेगा तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। शास्त्रीय विधान अध्यात्म सलाह ऐसी है। आपको कोई संशय?
1: संशय क्या होता है कि दूसरा पक्ष तो कभी कभी नहीं आ पाता, और जो व्यक्ति आता है वो बार बार एक ही प्रेशर देता है कि भाई साहब हम आपके साथ थे, आज आप हमसे अच्छे बुरे की परिभाषा की।
0: आपको बार बार साथ देना है कि मैं भारत का हूं, भारत का हमारा एक कानून है, मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे साथ है, हम कभी वो नहीं कर सकते जो भगवान और कानून के विधान के विपरीत हो, तुम साथ देना अन्यथा मत देना। ये जीवन कितने दिन का है, अंततो गत्वा विधान में भी आप भी चल रहे हो। अगर राजकीय विधान बिगड़ गया तो आपको भी दंड मिलेगा, और अगर भागवतिक विधान में बिगड़ गया तो ये शरीर और ये साम्राज्य सब छूट जाएगा, एक ना एक दिन छूटेगा ना, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ कानून का विधान है, इन दोनों को तुम हमारा साथ दो या ना दो, अगर तुम अधर्म से चलते हो हमारा साथ मत देना, हम प्रभु के भरोसे हैं, देख लेंगे। वो आदमी अगर थोड़ी भी मनुष्यता है तो समझेगा कि तुम चीज क्या हो। और अगर तुम किसी पहला एक एक शब्द आप अगर श्रवण करोगे तो प्रश्न नहीं रह जाएगा, किसी प्रलोभन में या किसी संबंध के दबाव में जो निर्णय किया जाता है वो धर्म में नहीं होता। धर्म किसी दबाव में निर्णय नहीं होता, बस हमारे जो अध्यात्म का निर्णय है वो ये है। इसीलिए प्राय आप लोगों से चूक हो जाती है, अगर ये अधर्मी आदमी है इसको हमने साथ नहीं दिया तो हमारे ऊपर क्षति कर सकता है, हमारे परिवार के ऊपर क्षति कर सकता है, हमारे पद में भी बाधा आ सकती है। तो ये पद कितने दिन रहेगा, ये पद कितने दिन रहेगा, ये शरीर कितने, ये अविनाशी है क्या, वो पद अविनाशी है क्या। अगर सही से चलोगे तो इस पद का प्रयोग करते हुए अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न कर लोगे, क्योंकि चाहे 10 लोगों की सेवा हो चाहे 1000 लोगों की सेवा हो तो प्रभु की ही रही ना, प्रभु को आप अपने साथ नहीं देख पाएंगे। आप एक शब्द और भी बोले कि आप भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, तो क्या आप ये नहीं अनुभव कर पा रहे हैं कि भगवान आपके साथ है, क्या आप जानते हैं इनसे आप जीते हो। आप भगवान ने आपको पद दिया है इसलिए सबकी मति फेर कर आपको जिताएंगे, वो ईश्वर है, सबके ऊपर शासन है। आप धर्म में चलते हो ना, वो जा रहा है डालने दूसरी जगह, लेकिन रास्ते में उसका दिमाग बदल गया, ईमानदार और सच्चा आदमी तो यही है यार, हम गलत थे इसलिए साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चा आदमी यदि हमारे प्रदेश में ऐसा रहेगा ना कि अगर ये रहा वो जाके तुम्हारे में डालेगा, है विरोधी वृत्ति लेकिन वो डालेगा, क्योंकि धर्म जबरदस्ती उसको अनुकूल बना लेता है। इसलिए हमारी तो जो यही भावना रहेगी, हम इस विषय में कभी सलाह नहीं दे सकते, वो बात नहीं बनेगी, वो ठीक नहीं, वो आपके परिवार के लिए भी हानिकारक होगा और परमार्थ के लिए भी हानिकारक होगा, पक्की बात है
1: जी। वसंत में गुरु जी करता तो मैं यही था, डर के करता था, आज के बाद ये निर्णय और स्ट्रांग हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल, और अगर निर्णय स्ट्रांग है तो हमारी एक बात याद रखना, वो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान तुम्हारे साथ, इस बात का अनुभव भी करो, है, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है, है सब जगह है, तो जहां मैं हूं वहां भी है, सबका है तो मेरा भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सर्व सामर्थ्यशाली है तो फिर क्या डरना है, सर्वत्र सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जिसका आश्रय लिया है सिर्फ, ऐसे कोई कोई डायलॉग थोड़ी है, केवल जिंदगी है, जिंदगी मृत्यु क्या चीज होती है देखा है, और कृपा क्या चीज होती है देखा है, और दोनों के बीच का युद्ध क्या होता है वो भी देख रहे हैं, इसलिए सत्य में चलो यार, चाहे दो दिन जियो क्या मतलब, हजार दिन जी के क्या करेंगे, पापाचरण करते हुए हजार दिन जिए तो क्या फायदा, एक श्वासो राधा बोलो सत्य में चले जाओ तो पहुंच जाओगे धाम, पहुंच जाओगे प्रभु के धाम। देखो त्रिभुवन का सबसे बड़ा जो देवलोक तक पद माना गया उसके ऊपर भी प्रजापति है और फिर परमेश्वरी पद है देवराज इंद्र पद, महाराज नहुष ने यज्ञ और पुण्य प्रताप से योग्यता प्राप्त की थी देवराज इंद्र पद की, देवराज इंद्र पद, अवसर आया देवताओं ने प्रार्थना की तो उनका प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अग्निदेव को आज्ञा करूं वायुदेव को आज्ञा करूं, प्रभु मैं डरता हूं इस बात से, बोले नहीं मैं सब देवता मिलकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हारे सामने होगा उसकी आदि शक्ति तुम में आ जाएगी और तुम्हारा पुण्य तो है तो तुम सब पे शासन कर सकते हो, पहले ऐसे हुए। अब जब देवराज इंद्र पद पे बैठे तो भूल गए वो वाली बात, नहीं एक जन साधारण आदमी के दरवाजे पे भी जान के नहीं कहा जाता, भैया मैं आपका ही सेवक हूं, और जब गद्दी पे बैठे तब उन्होंने ब्रह्म ऋषियों से कहा पालकी में लगो, त्रिभुवनपति है ना पाल, तो ब्रह्म ऋषियों ने कहा आज तक कोई ऐसे इंद्र ने अभद्रता नहीं की कि संत महात्माओं को पालकी में जोते, और देवराज इंद्र के महल में उनकी जो अर्धांगिनी थी पत्नी थी जगत पूज्या है उनके साथ कुदृष्टि का भाव आ गया, जानते हो क्या बने, सीधे पोस्ट हुआ उनका देवराज इंद्र से अजगर की योनि, ग्रंथ में पढ़ लो, देवराज इंद्र से अजगर की योनि, भूखे केवल वायु का आहार, बड़ी मुश्किल से कभी नियत समय रखा गया था उस पहर में कोई जीव फंस जाए तो भले वो खा ले नहीं तो भूखे, देवराज इंद्र पद और कितना निकृष्ट स्वरूप, भैया हम लोगों के तो बहुत छोटे छोटे पद हैं, अगर हमसे बिगड़ गए देवराज इंद्र पद और सीधे वो आपका पोस्ट हुआ अजगर योनि में, इसलिए बहुत सावधान, ये पद नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन धर्म रहेगा, सत्य रहेगा, भगवान का नाम रहेगा, हिम्मत रखो, जिस दिन मरना है उसी दिन मरना है, जिस दिन जो होना है उसी दिन होना है, उसके लिए चिंता क्या करना, हरि शरणम हमारी तो एक ही बात समझ में आती, तेरे किए सब होगा, तू नहीं चाहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं, निशोक हूं, केवल वाणी की बात नहीं होती, ये छाती की बात होती है, हाँ अनुभव करो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, हिरण्यकश्यप जैसा दुर्दांत त्रिभुवनपति, अब कहां तेरा हरि, कहां तेरा हरि, बांध दिया खंभे, कहां तेरा हरि, इस खंभे में भी है, तेरे में भी है, जिस तलवार से मारना चाहता है इसमें भी है, अच्छा इस खंभे में हरी, घूसे का प्रहार महान बलशाली, ऐसा भगवान का रूप ना कहीं पुराणों में लिखा था, ना वेदों में लिखा था, ना किसी ने, किसी महात्मा ने ऐसी भावना भी नहीं की थी, एक अलौकिक रूप, और ऐसी दहाड़ मारते हुए निकले कि तलवार ढाल गिर गई, मूर्छित होके गिर गया, भगवान का अपने 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने वो अद्भुत रूप, कोई देवता ऐसा नहीं था जो कांप न रहा हो भगवान के रूप को देख के, और इतने सुकुमार इतने सुंदर भगवान, इतने आवेश में ऐसा नरसिंह रूप, वही भगवान हमारे भी है, वही भगवान आपके भी है, डरना क्या है, जो होगा हमारे कर्म का फल अगर भगवान भगवाना चाहते तो वो चाहे जैसे चलो भोगना पड़ेगा, फिर डरना क्या है, बहादुर की बात चलो धर्म में, तो हमें लगता है यहां भी मंगल होगा और वहां भी मंगल होगा, अधर्माचरण न यहां सुख देता है ना परलोक में सुख देता है।